भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री अयोध्या राम जी लला की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रमापति रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई।

भर्जनम् भो बीजानाम् अर्जनम् सुख सम्पदाम् तर्जनै यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनाम् श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदर आभार अभिनंदन आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आज बुधवार है 12 अगस्त 2026, पंचांग शक संवत 1948 के श्रावण महीने की अमावस्या तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण प्रारंभ होता है। आपका उद्घोषक इकबाल कादिर उपस्थित है आज का ये विशेष प्रसारण लेकर। हमारा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 41वां दिन है। हम सभी यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा की मनोकामना करते हैं और आज के इस विशेष प्रसारण को आरंभ करते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 41वां दिन है। श्रावण के इस पवित्र महीने में श्री अमरनाथ जी यात्रा अपनी रूहानी आस्था और अकीदत के साथ जारी है। आज 12 अगस्त है और श्रावण मास की हरियाली अमावस्या, जो हिंदू धर्म में एक अहम और पवित्र दिन माना जाता है। हरियाली अमावस्या का ताल्लुक कुदरती हरियाली और शिव भक्ति से जोड़ा जाता है। इस दिन भक्त दरख्त लगाते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आरती और पूजा पाठ के जरिए सुकून, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के तनाजुर में अगर हम देखें तो श्रावण मास की अपनी एक अलग अहमियत है। यही वो पवित्र महीना है जिसमें भगवान शिव के बर्फानी स्वरूप यानी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश और विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु हमारे इस खूबसूरत घाटी में पहुंचते हैं, कश्मीर पहुंचते हैं। इस साल भी श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज़ 3 जुलाई से हुआ और यात्रा का आज यानी कि यात्रा का समास 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन इख्तिताम होगा। यात्रा उस दिन संपन्न होगी। यात्रा की कदीम और अहम मजहबी रिवायत छड़ी मुबारक भी इस पूरे सफ़र का एक खास हिस्सा है। छड़ी मुबारक को भगवान शिव की पावन निशानी माना जाता है और इसके साथ जुड़ी मजहबी रसूमात सदियों पुरानी रिवायत और आस्था की अक्कासी करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर छड़ी मुबारक के श्री अमरनाथ जी के पावन गुफा तक पहुंचने और खसूसी पूजा अर्चना के साथ यात्रा की मजहबी रसूमात अपने अहम मरहले में पहुंचती हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा सिर्फ एक मजहबी यात्रा ही नहीं बल्कि ये आस्था, सेवा, भाईचारे और इंसानियत की भी एक खूबसूरत मिसाल है। मुश्किल पहाड़ी रास्तों, बदलते मौसम और ऊँचाई के बावजूद श्रद्धालुओं का हौसला और भगवान शिव के तई उनकी अकीदत इन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज हरियाली अमावस्या के इस पवित्र मौके पर हमारी यही कामना है कि बाबा बर्फानी की कृपा सब पर बनी रहे, जम्मू और कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारा कायम रहे और यात्रा पर आने वाले तमाम श्रद्धालु सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित अपने घरों को वापस लौटें।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। और इस पहले सत्र में, पहले घंटे में हमारी कोशिश यही रहती है कि घाटी में हमारे मौजूद विभिन्न संवाददाताओं से हम आपकी बात कराएं, उनसे आज के दिन के हवाले से अपडेट्स हासिल करें और क्या कुछ नया ताज़ा हो रहा है जम्मू में और राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या हाल है। और साथ में ही हमारी कोशिश ये रहती है कि श्रीनगर और इसके आसपास जो इलाके हैं यात्रा मार्ग, वहाँ के हालचाल जानने की हम कोशिश करते हैं। और फ़िलहाल हम आपको यही बताना चाहेंगे कि यात्रा जो है फ़िलहाल अस्थायी रूप से बंद है।

जी श्रोता हूँ, 9 अगस्त से लगातार यात्रा जो है वो बंद है, क्योंकि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके कहने के मुताबिक जो यात्रा का मार्ग है वो अब इस काबिल नहीं है कि जो नए यात्री आएँ वो उस मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बालतल का मार्ग हो या पहलगाम का मार्ग हो, और इसलिए फ़िलहाल यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको कुछ पल पहले बताया कि आज से जो छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा की जानिब जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, और आज पहले दिन जो शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर में है, आज पहले दिन छड़ी मुबारक को शंकराचार्य टेम्पल में मंदिर में ले जाया जाएगा। उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम रहेगा हम आपको आगे इस ट्रांसमिशन में बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आज से जो हैं महंत दीपेंद्र गिरी, वो छड़ी मुबारक को आज श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा उस हवाले से भी आप तक अपडेट्स आएंगी। फ़िलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए। हम जल्दी ही लौटते हैं अपने पहले संवाददाता जो जम्मू के जावेद मेहराब साहब हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं, ताज़ा तरीन रिपोर्ट वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और इस पहले सत्र में हमारी कोशिश यही रहती है कि घाटी में मौजूद हमारे विभिन्न संवाददाता हम उनके साथ बात करें और आज के दिन के हवाले से उनके साथ वार्तालाप करें। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब। जावेद, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा अपने आखिरी क्षण में है और इस दौरान यात्रा के इस पावन यात्रा के इस उपलक्ष्य में जम्मू में श्रावण के इस महीने में यहाँ के प्राचीन मंदिरों में होने वाली पूजा में हिस्सा लेते श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और बाबा बर्फानी के प्रति उनका स्नेह देखते ही बनता है।
0: जी,
1: यहाँ भगवती नगर निवास स्थान में अंदर का माहौल उन श्रद्धालुओं के जोश जज्बे से भरा हुआ है जो

0: देश के विभिन्न भागों से निकलकर यहाँ पहुंचे जरूर हैं, लेकिन बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने की अनुमति का इंतजार सब्र, आस्था और प्यार से कर रहे हैं। और इस दौरान वो पूजा अर्चनाओं, भजन आरती में व्यस्त हैं, और यहाँ के माहौल माहौल जो है एकदम बेहतर वातावरण बना हुआ है, और श्रद्धालु अपने अपने काम में व्यस्त देखे जा सकते हैं।
1: जी
0: यहाँ जो निवास स्थान है, उनमें लंगर खाने पीने की व्यवस्था बनी हुई है, प्रबंधन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हजारों श्रद्धालुओं का मेला यहाँ लगा हुआ था वो अब एकदम दिखाई नहीं देता, लेकिन जो श्रद्धालु निवास स्थान के अंदर है वो बराबर अपनी जो यात्रा की प्रतिक्रियाएं हैं या यात्रा पर जो उनका स्नेह है, प्यार है, और निकलने की जो उनकी जाने की जो बाबा बर्फानी के द्वार तक जाने का जो उनका स्नेह है वो बराबर बना हुआ है। और इस दौरान मौसम जम्मू का अबर आलूद बना हुआ है,
1: जी
0: आसमान
1: जी
0: पर बादल छाए हैं, कल भी पूरे दिन यहाँ शहर में बारिशें होती रही, यहाँ के चौक चौराहे पानी से भर गए, चारों तरफ बारिश ने मौसम को हालांकि सुहाना बना दिया, लेकिन बारिशों की वजह से मैं बताऊँ आपको कि श्रद्धालुओं के लिए हल्का सा मतलब उनके लिए मायूसी का भी कारण है। हालांकि मौसम यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन सिर्फ मौसम की इस भविष्यवाणी और उनकी जो जो अनुमान है बारिश का वो बराबर बना हुआ है। आज भी अभी की अगर बात करूं तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस संभाग के जो जम्मू संभाग है वहां
1: जी
0: बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जी ये यात्रा स्थगित जो की गई है उसी के चलते वो थोड़ा सा मायूस जरूर है, लेकिन आश्वस्त भी है कि बाबा बर्फानी की भजन कीर्तन में, यहाँ के प्राचीन मंदिरों में जो पूजा अर्चनाएं हो रही है उनमें भी वो हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ के खास तौर पर जो यहाँ महाआरतियां हो रही हैं इस सावन के महीने में जगह जगह पर अलग अलग प्राचीन मंदिरों में, खास तौर पर शिव मंदिरों में जो पूजा अर्चनाएं हो रही हैं उन तक श्रद्धालुओं को प्रशासन की ओर से भी वहां पहुंचाया जा रहा है,
1: जी
0: और खुद भी जो श्रद्धालु हैं वो कई बार निवास स्थान से बाहर निकलकर, क्योंकि बिल्कुल सड़क के ऊपर ही ये निवास स्थान है और निवास स्थान के बाहर तमाम तरह का जो ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो बिल्कुल अवेलेबल भी होता है, जिसको लेते हुए वो शहर के विभिन्न जगहों पर भी घूम आते हैं, यहाँ के स्थानीय प्राचीन मंदिरों का भी वो वहां तक पहुंचते हैं और वहां पर हो रही पूजा अर्चनाओं में हिस्सा भी लेते हैं। ये
1: जी
0: सुबह से ही ये माहौल बना होता है, क्योंकि खास तौर पर इस श्रावण के महीने में स्थानीय लोगों का इन प्राचीन मंदिरों में जाना लगातार जारी है, और उसी के चलते वहाँ अलग अलग महाआरतियां होती है, पूजा अर्चनाएं होती है, पूजा में लोग इंडिविजुअल तौर पर भी हिस्सा लेते हैं और ग्रुप्स में भी हिस्सा लेते हैं, तो उसमें खास तौर पर इन श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है, और वो अपनी अपनी भेंटे भगवान शिव के पावन चरणों में चढ़ाते हैं, और ये माहौल जम्मू के अंदर देखा जा सकता है। लेकिन वहीं जो दूसरी यात्राएं हैं, जिस तरह से माता वैष्णो देवी की यात्रा है वो अभी चल रही है, तो जो जिन लोगों को अभी मौका है, जिनके पास वक्त है, वो उन यात्राओं में भी, जैसे ये माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसमें भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं का हिस्सा लेना, और उसके अलावा यहाँ के जो प्राचीन, जैसे मैंने कहा कि शिव स्थलों पर या मंदिरों में जाना लगातार जारी है,
1: जी
0: लेकिन मौसम जो है वो बराबर बना हुआ है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, कल पूरे दिन शहर के दोनों हिस्सों में कभी के ایک طرف والے, کیونکہ شہر جو ہے یہ طوی کے کنارے پر بسا ہوا ہے, ایک طرف پرانا شہر ہے ایک طرف نیا شہر ہے, دونوں طرف بارشیں لگاتار دن میں جاری رہی اور جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر جل بھرا

0: भी हुआ और कई बार कई स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना रहा, लेकिन इस बीच मौसम बहुत अच्छा हो गया लेकिन बारिशें तेज चलती रही और आज भी मौसम बादलों से घिरा हुआ है और इन संभावनाओं में सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों का होता है, क्योंकि तवी का जल स्तर भी तभी बढ़ जाता है जब पहाड़ी क्षेत्रों में बारिशें तेज हो जाती हैं। और उसी के चलते प्रशासन ने भी ये फैसला लिया है कि अभी फिलहाल यात्रा को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ट्रैक्स पर आगे भी काम चल रहा है, जो बालटाल के ट्रैक्स हैं उन पे काम चल रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो जानकारी है, और उसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह पर, क्योंकि कल बारिश रही कई जगह पर जो खासतौर पर देवल का इलाका जो है जो हमारे साथी है मोहम्मद तस्कीन उनके मुताबिक जो है अलग अलग जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है, कई बार कई जगह पर ट्रैफिक जो है उसकी आवाजाही सिंगल कर दी गई, एक ही तरफा कर दी गई, ताकि जो स्थानीय ट्रैफिक है या जो ट्रकों का ट्रैफिक है उसको जाने की इजाजत हो, लेकिन श्रद्धालुओं की जो प्राथमिकता है उनकी अलग है, उसकी मैनेजमेंट अलग है, उसके उसकी अनुमति का जो मैनेजमेंट है वो अलग तरह से फैसला लेता है, वो जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से अभी ये यात्रा की अनुमति तो नहीं होगी, लेकिन फिलहाल जो यात्री यहाँ बने हुए हैं जो विभिन्न भागों से देश के विभिन्न भागों से यहाँ घर से निकल चुके थे और यहाँ अब आस्था आस्था पहुँच रहे हैं वो निवास स्थान में पूरी तरह से सारे प्रबंधन और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ उनके बीच बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं और अनुमति का इंतजार कर रहे हैं।
1: जी, आज से जो छड़ी मुबारक का पवित्र गुफा की जानब जाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो रहा है और इस हवाले से प्रशासन ने भी कई इंतजाम किए हैं और ये यात्री शायद उसी इंतज़ार में होंगे कि हम भी अब इस यात्रा का हिस्सा बने, इसी तरीके से कि जब छड़ी मुबारक को गुफा की जानब ले जाया जाएगा तो हम भी इसी काफिले का हिस्सा बने। और सुनकर खुशी हुई कि मौसम में बदलाव आया है, मौसम सही हो रहा है, लेकिन साथ में जो आपने बोला कि यात्रा फिलहाल सस्पेंड है दोनों मार्गों से और कल जो बारिशें हुई उसकी वजह से जो कुछ भी घटनाक्रम घटा है उससे यात्रियों के जो जज्बात हैं उनको ठेस तो पहुँचती ही है, लेकिन हम उम्मीद यही रखते हैं कि आगे जो जो दिन बचे हुए हैं उनमें मौसम भी ठीक रहे और जो यात्रा का अपना एक शेड्यूल है उसके मुताबिक वो संपन्न हो जाए। आपका इस तफसीली रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: ये थे हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब, ये हमें मौसम के बारे में जानकारी दे रहे थे और इन्होंने बताया कि मौसम कल से जम्मू में ख़राब था, बारिशें हो रही थी और जो आम लोग हैं या वहाँ के यात्री जो यात्री आ रहे हैं बाहर के स्टेट्स से उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो प्रशासन है उनके इंतजाम में उनको ठहराने का, उनके खाने पीने का या जो दीगर इंतजाम होते हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। और इस हवाले से हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये भक्ति से भरा भजन सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे हमारे जो बानिहाल के संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीन उनके साथ जुड़ने की, उनके साथ बात करने की और मौसम के हवाले से उनके साथ कुछ बात करेंगे और नेशनल हाईवे के हवाले से उनके साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ बनी रहिए।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण। आप या आज यात्रा का 41वां दिन है और आज से ही छड़ी मुबारक की पवित्र गुफा की जानिब जाने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। आज पहले दिन छड़ी मुबारक को जो है प्राचीन शंकराचार्य मंदिर ले जाया जाएगा, जहां से पूजा होगी और उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम होगा उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे बानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तस्कीन साहब, आपका खैर मकदम है इस प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया।
0: यात्रा फिलहाल 9 अगस्त से सस्पेंड है रास्ते की खराबी की वजह से, और कल से हमने ये भी सुना कि जम्मू में बारिशें हुई और जो काफ़ी जगहों पर पानी भरा आया है। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास, हमारे सुनने वालों को प्लीज़ अपडेट कराएं।
1: जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम

0: कि आज चौथा दिन है जो श्री अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल रखा गया है। जम्मू से दोनों मार्गों के जरिए बालतल और पहलगाम के जरिए, क्योंकि पहले ही पहलगाम का रूट पीछे बंद किया गया था बारिशों के बाद, उसको नुकसान पहुंचने की जो इतला थी उसके बाद, और आज भी उनका रिपेयर चल रहा है। उसी वजह से अभी जो श्री अमरनाथ यात्रा चौथे दिन मुसलसल बंद रखी गई है। इस दौरान जो रामबन बाड़गाम सेक्टर है, इसमें आज रात को हल्की हल्की सुबह तक बारिशें हुई। अलबत्त बारिशों के बावजूद जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस पर ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रूटीन के मुताबिक चल रही है, और दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है हाईवे पर रवा दवा है। मुसाफिर ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा है, जबकि जो माल बदा ट्रैफिक उसे एक तरफ की मतलब एक तरफ से चलने की इजाजत दी जाती है। इस तरह इसी तरह दौरान जो कल जम्मू में जम्मू के क्षेत्र में जम्मू एरिया में मुख्तलिफ इलाकों में बहुत जबरदस्त बारिशें हुई, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी जो है वो असरअंदाज हुई, और उस वजह से जो कुटवा में उज दरिया में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो गई, और वहां पर फिर कई मकाम पर जो लोग फंसे थे, खवातीन फंसी थी, और कुल मिलाकर 7 अफराद को जो पुलिस है, CRF और जो एजेंसियां, उनकी जो बर वक्त कार्रवाई से उन्हें वहां से निकाला गया, बचाया गया। और ये जो अभी जो मतलब बारिशें थम गई, और जो पानी है दरियाए उज में जो चढ़ा हुआ था वो अब बहुत नीचे आया, कल वो बहुत खतरे के निशान के साथ साथ बह रहा था। तो इसके अलावा जो करीबन 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिशों का कहा गया है वहां पर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कटरा वगैरह के जो इलाके हैं, जम्मू के इलाके हैं, सांबा है, तो इन तमाम इलाकों में बारिशें हुई थी, लेकिन अब इस वक्त आज जो है मौसम तकरीबन कटरे बेहतर है। कल ये वहां पर शदीद बारिश हुई, और आज सुबह यहाँ पर रामबन बाड़गाम सेक्टर में हल्के हल्के बारिशों का एक दौर हुआ, शावर्स हुए, लेकिन इसका हाईवे पर कोई असर नहीं पड़ा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रूटीन के मुताबिक चल रही है, और उम्मीद है कि जब आज 12 अगस्त है और आज छड़ी मुबारक को भी शायद श्री अमरनाथ यात्रा की तरफ रवाना करने की उम्मीद है, और अभी भी लोगों को उम्मीद है जो भी इंतजामिया है वो हुकूमत के मतलब अहकाम इंतजामिया के उन अहकाम का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें यात्रा को रिज्यूम करने के बारे में या तो जो सस्पेंड की गई है पिछले 4 दिन से मुसलसल, अगर कहेंगे तो 5वां दिन है आज, वो 4 दिन से ऑफिशियली तौर से बंद कर दिया गया, मुअत्तल रखा गया है। यात्रा के ट्रैक्स जो उनका जो रिपेयर किया जा रहा है बालतल से भी और पहलगाम के रास्ते से भी, और उम्मीद है कि अब यात्रा अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, और उम्मीद है कि इससे पहले जो आखिरी फैसला इसे लिया जाएगा, अगर यात्रा रिस्टोर की जाती है तो यात्री मजीद आने के इम्कान है, और अगर इसे मुकम्मल तौर बंद कर दिया जाता है तो उसके बारे में भी कोई खास फैसला फाइनल लिया जाएगा। इस दौरान जो लंगर थे तो कुछ लंगर वाले जो है जो चंद्रकूट रामबन में थे उन्होंने अपना जो लंगर क्लोज किए हैं, कुछ तो कुछ अभी मौजूद है लेकिन कुछ वापस चले भी गए हैं यहाँ से। जी
1: सुनकर बहुत खुशी हुई कि मौसम में तब्दीली आई है, मौसम में बदलाव आया है, और साथ में आपने ये बताया कि जो नेशनल हाईवे है उस पर दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो भी मामूल के मुताबिक चल रहा है, और हम उम्मीद यही रखते हैं कि प्रशासन एक अच्छा फैसला ले और यात्रा को फिर से रिज्यूम करे, और रास्तों पर जो काम चल रहा है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यात्री अभी भी हैं जो चाहते हैं कि हम आएँ और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। हम यही उम्मीद और यही दुआ करते हैं कि उनकी ये मनोकामना पूरी हो। फिलहाल आपका इस तफसीली रिपोर्ट के लिए शुक्रिया, आपके साथ आगे और भी बात होगी।
0: शुक्रिया।
1: ये थे हमारे बानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जो हमें अपडेट दे रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से, और मौसम के हवाले से भी इन्होंने ये बात की कि बारिशों का जो सिलसिला कल हुआ था और जम्मू में कई जगहों पर जो पानी है दरियाओं में वो खतरे के निशान के आसपास घूम रहा था, जिससे लोगों में एक पैनिक की सिचुएशन बन गई, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बारिशें अब थम गई हैं और मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है। हमारा ये विशेष प्रसारण भी जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। अब आइए हम आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं आपको, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: मैं भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है।

0: अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।

दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।

0: बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
1: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
4: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बिछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी

0: और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ते की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjan Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
4: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this

0: Then have also been advised to remain cautious due to rough sea conditions. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: And in sports, India continued its impressive medal-winning run at the Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. Karan Singh and Sherjeen Shantimol clinched gold medals for India in the senior men's events last night. India also won a bronze medal in the senior men's foil event, with Tejas Patil finishing on the podium in a field featuring several renowned international fencers. Indian women fencers put up another dominant performance in the senior women's APE event, winning three medals. Tanishka Khatri clinched the gold, while her compatriot Kushi Dabade won silver. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
2: Thank you, Anuja. Prime Minister Modi urging citizens to hoist tricolour in his new Instagram video post finds mention in all the dailies today. Quoting the PM, the Asian age writes, take Viksit Bharat wow on Independence Day. Centre approves 1 billion 10 and 20 rupee polymer bank notes for field trials, headlines the Hindu. A headline in the Indian Express writes, amid pushback from opposition, government ready to refer FCRA bill to JPC. The Economic Times states, Fitch retains India growth outlook at stable. Robust growth and solid external finance fundamentals will balance fiscal and energy risks. Keeps credit rating at BBB. In a major move to deepen US-India bilateral space collaboration, NASA invites ISRO to moon base project, reports the Hindustan Times. The Times of India writes about a study stating, with global rise in exposure to dangerous humid heat, India is emerging as the most affected country. Another headline in the same paper writes, no more plastic sachets for pan masala. Under the headline, women are second to none in India's skill-building vision. An op-ed in Hindustan Times writes about the fact that women comprise over 56% of certified candidates under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, demonstrating that aspiration for technical mastery is universal. And finally, the Pioneer carries a story under the headline, Delhi unveils four tourism circuits, presenting the national capital as an integrated tourism experience and develop it as a destination city for a transit hub. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan flags off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुद नविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शर्जिन शैंतिमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत नाम तब्दीली बिल 2026 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा ने इस बिल को कल मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को भी आज बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कानों

0: रहनुमा जिनमें रियासती जनरल सेक्रेटरी अमर कुमार बौरी और रियासत के नायब सदर भानु प्रताप शाही एहतजाज के मकाम पर पहुंचे और तलबा के लिए हिमायत का इजहार किया। रांची से महविश रामायण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में कल रात आग लगने के हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और चार दीगर जख्मी हो गए। इंतजामिया के मुताबिक ये आग विले पार्ले वेस्ट में वाक़ 12वीं मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी। बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को रात 10 बजे के करीब वाक़े की इत्तला मिली। बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दीगर खिदमात को फौरी तौर पर बुरुए कार लाया गया। देर रात लगभग 12:25 पर आग पर काबू पाया गया। मजीद जाँच जारी है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों से कल मुजाहिरों का इनेकाद करने की अपील की है। इस तरह इन मुजाहिरों को बैन अल-अक़वामी अहमियत हासिल हो गई है। आवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि कई मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारतखानों और सिफारती मिशनों के बाहर मुजाहिरों का इनेकाद करने का मंसूबा है ताकि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल की जानिब बड़े पैमाने पर तवज्जो मबजूल कराई जा सके। कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो खित्ते में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ बैन अल-अक़वामी तवज्जो रागिब करने के लिए रैलियों का भी इनेकाद करे। अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी ऐलान किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। केरलम के मुख्तलिफ मंदिरों में आज आबा व अजदाद को खराज अकीदत पेश करने से मुतालिक रिवायती रस्म करक्की डाका वावू बली अदा की जा रही है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: केरलम में आज सुबह करक्की डाका वायुबाली की रस्म शुरू हो गई है। बेशतर मंदिरों में ये रसूमात सुबह 3:30 और 5 के दरमियान शुरू हुई। मलयालम माह करक्की डाका नए चांद के दिन को मरहूमीन के लिए रसूमात अदा करने के लिए हिंदू रिवायत में इंतहाई मुकद्दस तसव्वुर किया जाता है। मुख्तलिफ देवास्वोम बोर्ड्स और मंदिरों ने अकीदतमंदों के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की हैं। बारिश के मद्देनज़र नदियों के किनारों और साहली इलाकों में सिक्योरिटी का इजाफी बंदोबस्त किया गया है। अनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरक़ी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों सिक्किम, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, मशरक़ी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार जजायर में अगले 2-3 के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून की लगातार बारिश की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखना पड़ने का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थरों के गिरने की वजह से आमोदरफ्त मुतासिर है और लोगों को बिजली और पानी फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के 6 में अगले 12 के दौरान शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर मकामात पर रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। मंडी में ज़िला इंतजामिया ने मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थर गिरने के खतरे के पेश नज़र मंडी और कुल्लू के दरमियान कौमी शाहरा 21 और मंडी और जोगिंदर नगर के दरमियान कौमी शाहरा 154 पर कल रात से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह मुअत्तल कर दी है। इसके अलावा रियासत की दीगर 204 सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान शिमला के महकमे मौसमियात ने 6 कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में तेज़ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें और मकामी इंतजामिया की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन जारी होने वाली हिदायत पर अमल करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इधर ओडिशा में एक बार फिर दूर दराज के मकामात तक बारिश होने का इम्कान है जबकि खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का हल्का बन रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के ज़्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई की है हालांकि इक्का दुक्का मकामात पर कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे ने आज अंगुल और क्योंझार अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और संबलपुर समेत दीगर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी।

0: किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ऊंची लहरें उठने के मद्देनजर चौकस रहें। ज़िरात और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में हरियाली अमावस्या के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क भर में जनाब चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े हजारों कारकुन भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 50,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का इज्तिमाई अहद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 19 रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कैंसर को काबिल इतला मर्ज करार देने पर गौर करें ताकि मर्ज का जल्द पता लगाया जा सके और मरीजों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कल ये हिदायत जारी की। अदालत को बताया गया था कि 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में से 17 ने पार्लियामानी कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद पहले ही काबिल इतला बीमारी के तौर पर कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। मरकज ने अदालत को बताया कि सेहत रियासत का मौजू है और वाजह किया कि 17 रियासतों ने पहले ही कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की तमगे जीतने वाली मुतासिर गुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। मर्दों के सीनियर मुकाबलों में कल रात भारत के करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने मुल्क के लिए सोने के तमगे जीते। वहीं मर्दों के सीनियर फॉइल मुकाबले में भारत के तलवारबाज तेजस पाटिल ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांस्य का तमगा जीता। इधर खवातीन भारतीय तलवारबाजों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन के सीनियर एपी मुकाबले में 3 तमगे जीते। इनमें तनिषा खत्री का सोने का तमगा और उनकी हमवतन खुशी दाभाड़े का चांदी का तमगा शामिल है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के लिए मुंतखब किया है। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। इसी अखबार ने दिल्ली असेंबली में कौमी गीत वंदे मातरम गूंजने और वजीर आला रेखा गुप्ता और मेम्बरान असेंबली के तिरंगा लिए हुए असेंबली पहुंचने को बड़ी खबर बनाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर का FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH और हमारा OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, और आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 41वां दिन है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जो सालाना यात्रा होती है अपने एक इंतहाई अहम और रूहानी मरहले में दाखिल हो चुकी है। यात्रा के रिवायती और मजहबी इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए अब भगवान शिव की मुकद्दस छड़ी यानी छड़ी मुबारक के सालाना यात्रा की तैयारियां और खसूसी मजहबी रसूमात शुरू हो गई हैं। आज 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को तारीखी शंकराचार्य मंदिर ले जाया जा रहा है, जहां खसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर में मजहबी रसूमात अदा की जाएंगी। इस मुकद्दस सिलसिले का एक और अहम पड़ाव 15 अगस्त को आएगा, जब श्रीनगर के दशमानी अखाड़े में वाक़ा श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना से मुतालिक रसूमात अदा की जाएंगी। इसके बाद 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर दशमानी अखाड़ा में रिवायती छड़ी पूजन किया जाएगा। इस हवाले से हम और भी बात करेंगे और किन किन रास्तों से किन किन पड़ावों से होकर छड़ी मुबारक आखिर रक्षाबंधन के दिन

उसका आखिरी पूजन होगा श्री अमरनाथ जी की गुफा में, उस पर आगे भी बात होगी। फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण आप सुनते रहिए और हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल तथा हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आज 12 अगस्त है और आज के ही दिन से शुरू हो रहा है जो छड़ी मुबारक है उसका श्री अमरनाथ जी यात्रा की गुफा की जानिब ले जाने का सिलसिला। और इस मुकद्दस सिलसिले का एक और अहम

पड़ाव 15 अगस्त को आएगा, जब श्रीनगर से दशमानी अखाड़े में वाका श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना से मुतल्लिक रसूमात अदा की जाएंगी। इसके बाद 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर दशमानी अखाड़े में रिवायती छड़ी पूजन किया जाएगा। ये तमाम जो रसूमात हैं इस कदीम रिवायत का हिस्सा हैं, जिसके ज़रिए छड़ी मुबारक को भगवान शिव के मुकद्दस अलामत के तौर पर इज्जत व एहतराम के साथ मुकद्दस गुफा की तरफ ले जाया जाता है। इस मुकद्दस छड़ी के साथ साधु संत, मजहबी शख्सियात और श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। ये सिलसिला शुरू कहाँ से होगा? ये सिलसिला पहलगाम से शुरू होगा और एक रिवायती तरीके से शुरू होगा। छड़ी मुबारक का असल रिवायती पहाड़ी सफ़र 22 अगस्त को पहलगाम से शुरू होगा। शेड्यूल के मुताबिक 22 और 23 अगस्त को छड़ी मुबारक पहलगाम में इसका क़याम होगा, ये क़याम करेगी। इसके बाद 24 अगस्त को चंदनवाड़ी पहुंचेगी, छड़ी मुबारक पहलगाम से आगे बढ़ते हुए चंदनवाड़ी पहुंचेगी, जो रिवायती अमरनाथ यात्रा का एक अहम पड़ाव शुमार होता है। इसके बाद अगले मरहले में छड़ी मुबारक शेषनाग पहुंचेगी, जहां रात का क़याम होगा। शेषनाग अपनी कुदरती खूबसूरती और रूहानी माहौल के लिए भी मशहूर है। 26 और 27 को ये यात्रा पंचतरनी पहुंचेगी। इसके बाद जो है जहां दो रातों का क़याम मुकर्रर है, ये मुकद्दस गुफा से पहले आखिरी बड़े पड़ाव में से एक है। और बिलाखिर 28 अगस्त पूरे मजहबी सफ़र का सबसे अहम दिन, 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन मौके पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गुफा तक पहुंचेगी। महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छड़ी मुबारक के साथ साधु संत और श्रद्धालु मुकद्दस गुफा पहुंचेंगे, जहां खुसूसी पूजा प्रार्थना और दर्शन के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा की मजहबी रिवायत का इख्तिताम होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो छड़ी मुबारक है, इसकी क्या मजहबी अहमियत है, हिंदू धर्म में इसकी क्या अहमियत है। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहना पड़ेगा, और हम जल्द ही हाजिर होते हैं मज़ीद जानकारी के साथ।

जी श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे थे छड़ी मुबारक की। छड़ी मुबारक की मजहबी अहमियत क्या है उसके बारे में हम आपको चंद बातें बताना चाहेंगे। यहाँ पर छड़ी मुबारक सिर्फ एक मुकद्दस छड़ी नहीं बल्कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की कदीम मजहबी रिवायत और आस्था की एक अहम निशानी है। रिवायत के मुताबिक मुकद्दस छड़ी को भगवान शिव की मौजूदगी और आशीर्वाद की अलामत समझा जाता है। इस रिवायत में ख़ास बात यह है कि दो छड़ियां एक भगवान शिव और दूसरी देवी पार्वती से मंसूब हैं, मुकद्दस गुफा तक ले जाई जाती हैं। इस तरह छड़ी मुबारक का सफ़र शिव और शक्ति के रूहानी तसव्वुर से भी जुड़ जाता है।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।

वृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः।

जी श्रोताओं, सुबह के 9:25 होने वाले हैं। अब हम आपके लिए समाचार पेश करेंगे हमारे श्रीनगर के केंद्र से। हमारे साथ बने रहिए और समाचार सुनिए।

पहल के तहत यूटी के तमाम अजला में हुब्बुल वतनी के जज्बे को तकवीत बख्शने ने इस जद्दोजहद आज़ादी के सपूतों को खराज अकीदत अदा करने के लिए तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें लोग कौमी तिरंगा अपने हाथों में लेकर वतन के तई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत

0: सुबह श्रीनगर में जेल ढल के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई। एसकेआईसीसी से निकाली गई इस रैली की कयादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। इस रैली में हजारों की तादाद में स्कूली बच्चों, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकारों और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। अनंतनाग में भी आज जिला सतह की मेगा तिरंगा रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम से निकाली गई। यह रैली कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर लालचौक अनंतनाग में इख्तिताम पजीर हुई। दरियासना, बाणीपुरा, कुलगाम और गांधरबल अजला में भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत रैलियों और प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। कुपवाड़ा जिले के टीटवाल में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक कल एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में 1,200 मीटर लंबा कौमी परचम अपने हाथों में उठाकर स्कूली बच्चों, असातिज़ा, साबिक फौजियों, सिविल पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी मेंबरान और मकामी बाशिंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान बड़गाम में भी तिरंगा रैलियां निकाली गई। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राणा ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की मुकम्मल और मुअसर अमलावरी पर जोर देते हुए कहा है कि सरकार जंगलात के आसपास रहने वाले लोगों के हकूक को तहफ्फुज़ फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने जंगलाती अराजी को भी तहफ्फुज़ फराहम करने और माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने के लिए मुनासिब इकदाम करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इस सिलसिले में सरकार की जानिब से जारी किए गए एक मुफसल सर्कुलर का तज़किरा करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार माहौलियात की पाकिजगी और जंगलातों लेकिन के हुकूक को तहफ्फुज़ फराहम करने में संजीदा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी इफ्तिखार के एहतराम से मुतलिक तरमीमी बिल को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट ने इस बिल को पिछले माह पास किया था। दरियासना वजीर दाखिला अमित शाह आज केरला रियासत का नाम तब्दील करने से मुतलिक बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने कल ख्वाजा बाजार श्रीनगर में हजरत ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया पर हाजिरी दी और वहां सालाना उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने आस्तानी आलिया के सहन की दीवार बंदी और दीगर तामीराती कामों का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने उर्स के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी। आकाशवाणी के रीजनल न्यूज यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियाद पर बल्तीन न्यूज रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलब है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए अंग्रेजी और उर्दू मतन को नशरियाती मैयार के मुताबिक बल्ती में तर्जमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिहायश पजीर अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 15 अगस्त 2026 तक शाम 5 बजे तक आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज यूनिट में जमा कर सकते हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.9 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर का एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर, डीटीएच के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स पर आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। आपका उद्घोषक इकबाल कादर हाजिर खिदमत है। एक बार फिर से आपने खबरें सुनी और खबरों से पहले हम बात कर रहे थे, आज 12 अगस्त है, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 41वां दिन और आज से शुरू हो रहा है छड़ी मुबारक को बाबा बर्फानी की गुफा तक ले जाने का सिलसिला। श्रोताओं, इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक मुकर्रर की गई थी। ताहम ख़राब मौसम और रास्ते की मरम्मत और देखभाल के बायस आम यात्रा को 9 अगस्त से आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। इसके बावजूद छड़ी मुबारक की रिवायती मजहबी रसूमात अपने मुकर्रा प्रोग्राम के मुताबिक की जा रही हैं, क्योंकि यही सालाना मजहबी रिवायत यात्रा की रस्मी अख्तिताम का एक अहम हिस्सा है। लिहाजा 12 अगस्त से शुरू होने वाला ये सिलसिला सिर्फ चंद मजहबी रसूमात का मजमुआ नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, रिवायत, शिव भक्ति और कश्मीर की मजहबी व सकाफती विरासत की अक्कासी भी करता है। आज जब छड़ी मुबारक तारीखी शंकराचार्य मंदिर की जानिब ले जाई जा रही है तो वादी में एक बार फिर भोलेनाथ की भक्ति और रूहानी अकीदत का माहौल नुमाया हो रहा है। आइए इस मुकद्दस मौके पर हम सब बाबा बर्फानी से प्रार्थना करें कि जम्मू और कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारा कायम रहे और हर श्रद्धालु के दिल में अकीदत, सेवा और इंसानियत का जज्बा मजीद मजबूत हो।

श्रोताओं, पूरे जो श्रावण का महीना होता है इसकी एक बहुत ही अद्भुत महत्वता होती है हिंदू धर्म में, क्योंकि ये महीना सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा और मुख्तलिफ जो मज़हबी रसूमात होती हैं हिंदू धर्म में उनके लिए माना जाता है। और देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग चीज़ें इस महीने के दौरान की जाती हैं। और इन्हीं चीज़ों में एक और चीज़, या यूं कहें कि एक और यात्रा जो इस महीने में होती है, उसको झूलन यात्रा कहते हैं, जो राधा और कृष्ण के प्रेम और भक्ति का पवित्र स्थू है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में झूलन यात्रा एक नहायत ही खूबसूरत और आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव है। इसे झूलन उत्सव, झूलन पूर्णिमा या हंडोवला के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की भक्ति और उनके दिव्य प्रेम से मंसूब और श्रावण मास यानी सावन के दौरान मनाया जाता है। झूलन यात्रा क्या है, आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। झूलन यात्रा का मतलब है भगवान राधा और कृष्ण को सजे हुए झूले पर झूलाना। मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियों को खूबसूरत वस्त्र, फूलों

जेवरात से सजाया जाता है और इन्हें एक विशेष झूले पर बिठाया जाता है। भक्त गान भजन और कीर्तन के साथ इस झूले को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। इस पूरे आयोजन में भक्ति संगीत, प्रेम और आनंद का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। झूलन यात्रा कब मनाई जाती है और इसके कुछ और तथ्य आपके सामने रखेंगे। इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे झूलन यात्रा के बारे में। झूलन यात्रा आमतौर पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन के रूप में मनाई जाती है। अगरचे अलग मंदिरों और इलाकों में इसकी मुद्दत या इसका समय मुख्तलिफ हो सकता है, बाज़ मकामात पर पूरे श्रावण मास में भी झूलन की परंपरा जारी रहती है। राधा कृष्ण से ताल्लुक़ के बारे में आपको चंद बातें बताना चाहेंगे। झूलन यात्रा का सबसे अहम पहलू राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम है। विष्णु परंपरा में राधा जी को भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त और प्रेम की प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि वर्षा ऋतु में ब्रज भूमि, वृंदावन और इसके आसपास के वनों में झूले डालते थे और राधा कृष्ण और गोपियों के

साथ झूलने की लीला की जाती थी। इस भाव को याद करते हुए आज मंदिरों में झूलन यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान वृंदावन में खास रौनक होती है। झूलन यात्रा का सबसे खूबसूरत रूप आपको मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलता है। सावन के दौरान मंदिरों को फूलों, पत्तों, झालरों और मुख्तलिफ किस्म की सजावट से सजाया जाता है। राधा कृष्ण की मूर्तियों को रंगारंग और अलग अलग श्रृंगार दिया जाता है और कई मंदिरों में भक्तों को झूला झुलाने की सेवा का मौका भी मिलता है। मंदिरों में भजन कीर्तन और आरती से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। इस यात्रा के बारे में और भी हम बात करेंगे आगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए इस ट्रांसमिशन के साथ। अगर आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कोई बात, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर SMS या WhatsApp के ज़रिए हम तक अपनी बात पहुँचाइए और हम कोशिश करेंगे कि वो बात आपकी आगे भी पहुँचाई जाए।

जी श्रोताओं, हम बात कर रहे थे झूलन यात्रा के मुतालिक और झूलन यात्रा की आध्यात्मिक संदेश क्या है। झूलन यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी पोशीदा है। राधा और कृष्ण के प्रेम को विष्णु भक्ति में प्रेम, समर्पण और भगवान से जुड़ने की प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। भक्तों के लिए झूला झूलना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि भगवान की सेवा और इसके प्रति अपने प्रेम का इजहार करना भी है। ये बात भी हमें यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति, सादगी, प्रेम और समर्पण सबसे अहम चीज़ें हैं। झूलन यात्रा में भजन, कीर्तन, लोकगीत और धार्मिक संगीत का खास मकाम है। मंदिरों में भक्त राधा कृष्ण की महिमा के गीत गाते हैं और आरती के साथ अत्सु को मुकम्मल करते हैं। इस तरह झूलन यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ भारतीय संगीत, लोक संस्कृति और कला को भी जिंदा रखती है और इनको ज़िंदा रखने में भी एक अहम भूमिका अदा करती है। झूलन यात्रा का एक खूबसूरत पहलू इस सावन और प्रकृति से जोड़ हमें सावन और प्रकृति से जोड़ना भी है। वर्षा ऋतु में जब ज़मीन पर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे फलने फूलने लगते हैं और मौसम खुशगवार हो जाते हैं तो झूलने में भारतीय लोग जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। इसलिए झूलन यात्रा में प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करने और इसके संरक्षण का भी संदेश देती है। इस यात्रा पर और भी बात होगी। हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के साथ साथ DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर। अगर आप प्रशासन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव उन्हें देना चाहते हैं, हमारे दो टोल फ्री नंबर्स हैं श्रीनगर और जम्मू के लिए। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-1807199। इसी तरह से जम्मू के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1807198। आप हम तक ईमेल के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं, akashvanibaltal@gmail.com। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 41वां दिन है और आज 12 अगस्त है और 9 अगस्त से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित है क्योंकि रास्ते में मरम्मत चल रही है, बालतल मार्ग में भी और पहलगाम मार्ग में भी, क्योंकि बारिशों के कारण रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया था। और जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इतला के मुताबिक यात्रा मार्ग जो है बस कुछ ही दिनों में चलने योग्य हो जाएगा और फिर से यात्रा को जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको पता ही होगा कि आज छड़ी मुबारक को शंकराचार्य मंदिर ले जाया जा रहा है जहां पूजा अर्चना होगी और उसके बाद 28 अगस्त को यानी रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में जाकर आखिरी पूजा होगी और उसके साथ ही यात्रा संपन्न हो जाएगी। हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए और भक्ति संगीत सुनते रहिए।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH तथा हमारी OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अपने आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर है, जारी है। आज यात्रा

का 41वां दिन है। हम बात कर रहे थे श्रावण मास में मनाने वाले चंद त्योहारों की, चंद रस्मों रीति रिवाजों की। श्रावण मास में सिर्फ शिवजी से जुड़ी रसूमात ही नहीं, बल्कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों में कई व्रत, त्यौहार और धार्मिक परंपराएं भी मनाई जाती हैं। 2026 के पंचांग के मुताबिक श्रावण में हरियाली तेज, नागपंचमी, श्रावण पुत्र एकादशी, ओनम, वार्षिक लक्ष्मी व्रत और रक्षाबंधन जैसे अहम मौके भी आते हैं। अलबत्ता इलाकाई पंचांग के मुताबिक तारीखों में फ़र्क हो सकता है। हरियाली तेज, ये श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ख़ासतौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दीगर शिमाली इलाकों में इसकी खास रौनक होती है। औरतें मेहंदी लगाती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं, झूले झूलती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। ये त्यौहार सुहाग, प्रेम और परिवार की खुशहाली से जोड़ा जाता है। 2026 में इस साल हरियाली तेज 15 अगस्त को है। इसके बाद श्रावण पुत्र एकादशी, ये भगवान विष्णु को समर्पित एक अहम एकादशी व्रत है। कई शादीशुदा जोड़े इस दिन संतान, सुख, परिवार की खुशी और समृद्धि के लिए व्रत और पूजा करते हैं। भक्त भगवान विष्णु की आराधना, मंत्र जाप और व्रत कथा का श्रवण करते हैं। 2026 में ये 23 अगस्त को मनाई जाएगी। और भी कई सारे त्यौहार हैं, रसूमात हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, इसका हिस्सा बने रहिए और हमें सुनते रहिए।

जी श्रोताओं, हम बात कर रहे थे श्रावण मास में मनाने जाने वाली चंद त्यौहारों की, चंद परंपराओं की। और इसमें अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमारे पास आता है श्रावण सोमवार व्रत। श्रावण के हर सोमवार को भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं। शिवलिंग पर जल अभिषेक, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित किए जाते हैं, जबकि ओम नमः शिवाय का जाप और शिव चालीसा का भी पाठ किया जाता है। उसके बाद आता है सोम प्रादवश व्रत। जी हाँ श्रोताओं, अगर इन नामों को पढ़ने में किसी किस्म की गलती हमसे हो जाए तो उसके लिए हम पहले से ही क्षमा मांगते हैं। जब त्रिदिवेशी तिथि सोमवार के दिन आए तो उसे सोम प्रादविश कहा जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भक्त व्रत रखकर सुख शांति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। हरियाली और झूलों की परंपरा। श्रावण में वर्षा ऋतु के बाईस चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कई इलाकों में औरतें और लड़कियां दरख्तों पर झूले डालती हैं और लोकगीत गाती हैं और सावन के गीतों के जरिए अपनी खुशी का इजहार करती हैं। यही परंपरा बाद में धार्मिक त्यौहारों खुसूसन झूलन यात्रा से भी जुड़ती है। और एक बहुत ही आम त्यौहार जो जिसके बारे में आमतौर पर सब लोगों को पता है, वो है ओणम। ओणम भी इसी महीने में मनाया जाता है। केरला में श्रावण के आसपास मनाया जाने वाला ओणम एक बड़ा सांस्कृतिक और फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसमें फूलों की पुकलिम, रिवायती भोजन, कश्ती दौड़ और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। 2026 में ओणम 26 अगस्त को मनाए जाने का इरादा है। उसके बाद आती है हमारी गायत्री जयंती। श्रावण पूर्णिमा के दिन कई परंपराओं में गायत्री माता से मुतल्लिक विशेष पूजा और मंत्र जाप किया जाता है। गायत्री मंत्र को ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक जागृति से जोड़कर देखा जाता है। 2026 में ये भी 28 अगस्त को है। कुछ और त्योहारों के

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल तथा DTH के साथ साथ

0: बड़ी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर

से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित है। इस वजह से पिछले 4 दिनों से कोई भी यात्री शिवलिंगम की तरफ नहीं जा पाया है किसी भी रास्ते से, और प्रशासन की यही कोशिश है कि जो रास्ता ख़राब हो चुका है बारिशों की वजह से उसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और यात्रा को फिर से चालू कराया जाए। और आज के दिन से ही जो छड़ी मुबारक है उसके पवित्र गुफा की जाने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। आज पहले दिन छड़ी मुबारक को ऐतिहासिक मंदिरों जो श्रीनगर में मंदिर वाका है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ से ये फिर आगे जाएगी, जैसा हमने सुबह के ट्रांसमिशन में आपको बताया। तो ये सिलसिला जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा और छड़ी मुबारक के मुताबिक भी उसके मुतालिक भी हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे। फ़िलहाल ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हमारा साथ देते रहिए।

देवाधिदेव महादेव आशुतोष और धरदानी करुणा वरुणा लई परात पर ब्रह्म श्याम सदा शिव जी भगवान शिव की कथा में आइए हम सब मिलकर रुद्राक्ष की महिमा सुने। भगवान वेदव्यास जी ने शिव महापुराण लिखा है जिसमें 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक है। शिव महापुराण में श्याम सदाशिव जी भगवान की बड़ी महिमा गाई गई है जिसमें भगवान शिव जी का लिंग का महात्म्य, भगवान शिव की पूजा कैसे करे, किस तरीका से करे, कौन कौन से मंत्र है और शिव के संबंध में बहुत कथा लिखी गई है। इसमें भस्म की महिमा, शिव नैवेद्य की महिमा, बिली की महिमा और ऐसे तो शिव महापुराण में बहुत महिमा। सती प्रागट्य की कथा है, शिव सती का विवाह की कथा है, पार्वती जगदम्बा प्रागट्य की कथा है, शिव शिवा का विवाह की कथा है, गणेश कार्तिकेय ज्योतिर्लिंग, ऐसे ऐसे बहुत कथा लिखी गई है। कोई नहीं गा सकते हैं। असीत गिरीशम शात कज्जलम सिंह।

ऐसी ऐसी सामग्री लेकर अहर्निश सरस्वती जी भी गुणगान लिखे, फिर भी भगवान शिव जी की गुणगाथा नहीं लिख सकते। आत्मदर्शी पुरुषों ने भी भगवान शिव जी का साक्षात्कार किया, उन उन महात्माओं भी इस महिमा भगवान भोलेनाथ की महिमा नहीं गा सकते, तो हम कौन है? हमारी कोई विषाद नहीं। ऐसे भगवान श्याम सदा शिव जी की बड़ी भारी महिमा शिव महापुराण में गाई गई है। आइए इसमें से रुद्राक्ष की महिमा हम गाए। हमारे भोलेनाथ को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। ऐसे शिवपुराण का विधान है, केवल रुद्राक्ष धारण करने से ही एक चौथाई शिव भक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने से एक चतुर्थांश शिव भक्ति, भस्म धारण करने से एक द्वितीयांश शिव भक्ति, और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से तीन चतुर्थांश शिव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो संपूर्ण

भक्ति मिल जाती है। केवल रुद्राक्ष धारण करने से इतना लाभ होता है। तो रुद्राक्ष संबंध में शिव महापुराण में कथा लिखी और ये सब कथा सुत जी शौनक आदि ऋषि मुनियों प्रयाग तीर्थ में जहां गंगा यमुना और सरस्वती जी का त्रिवेणी संगम है वहां ए त्रिवेणी के तट पट पर एक कथा गाई गई है। सुत जी कहते हैं भगवान शिव ने शिवा की पास भी ये महिमा गाई गई है। ऐसे तो बहुत सम्मान दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने मान संतान नारद ऋषि की पास ये कथा कहते हैं और सनकादिक ऋषि मुनियों भगवान वेद व्यास की पास ये कथा कहते हैं। ऐसा भी बहुत विधान गाया गया है। रुद्राक्ष संबंध में ऐसी कथा है, एक दफा भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवधरदानी करुणा वरुणालय प्रात पर ब्रह्म भगवान शिव जी जंगल में तप करने के लिए गए हैं। तप के जो देव है, तपस्या के जो देव है, तप जिन्हों को बहुत प्रिय है, जंगल में जाकर पद्मासन लगाकर ध्यान लगाकर एकांत में और नितांत एकांत में आसन जमाए के भोलेनाथ बैठे और तप करते। तप के देव है जिसको तप बहुत प्रिय है। संसार में जो तप नहीं करता है उसका पत हो जाता है। तप शब्द ही ऐसा है, उसको उलट दो, तप और पत अपने आप पत हो जाता है। मनुष्य जन्म लेकर अगर तप न करे, भक्ति न करे, भजन न करे तो उसका पत हो जाता है, अपने आप ही उसका पतन होता है। भगवान शिव तो तपस्या के देव है, तप जिसको बहुत प्रिय है, ऐसे भगवान शिव जी जंगल में बैठे हुए तप कर रहे हैं और जो अपना ही सहज स्वरूप है, अपना ही भोलेनाथ का, भोलेनाथ का अपना स्वरूप कौन है? ओमकार है वो भोलेनाथ का अपना अपना अपना स्वरूप और अपना ही नाद गाने लगे, अपना ही गीत गाने लगे। जीव को भी ऐसा ही करना चाहिए। शिव की अगर भक्ति करना हो तो हमारे जो परात पर ब्रह्म भगवान शिव है उसकी धुन गुन गुनाना चाहिए। इसलिए तो हम गाते हैं ओम शिव परात पराशिव ओंकारा शिव तव शरणम्।

ओमकार का भोलेनाथ जंगल में जाकर जाप करने लगे। समय व्यतीत होते हुए एक दफा भगवान भोलेनाथ की अपने सहज ही समाधि खुली, आंखें खुल गई और आंखों में से सहज ही अश्रु के दो बिंदु पृथ्वी में गिर पड़े और भोलेनाथ का यह प्रसाद अपने आप ही सहज ही जो अश्रु गिरा उसमें से वृक्ष उत्पन्न हो गए और वृक्ष में सुंदर फल आया। भोलेनाथ ने देखा, ऐसा है, मेरे आंख में से जो अश्रु गिरे और उसमें से वृक्ष उत्पन्न हो गए और फल आए। भोलेनाथ ने देखा, आशीर्वाद का धोद दिया, जा तेरा नाम रुद्राक्ष रहेगा, मेरी आंखों में से जो गिरे उसमें से जो प्रकट हुए वो फल मुझे भी बहुत प्रिय रहेगा और जो कोई वो पहरेगा उसको बहुत फल मिलेगा और नाम दिया है रुद्रा। भोलेनाथ ने तप किया और तप में से जो अश्रु गिरे उस अश्रु में से, उस प्रसाद में कुछ न कुछ चीज हमें मिल जाती है। और शास्त्रों में गाया भी गया।

शंकर जी के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ वृक्ष रुद्राक्ष, वृक्ष रुद्राक्ष, ये फल का नाम रुद्राक्ष, वृक्ष का नाम भी रुद्राक्ष, फल का नाम भी रुद्राक्ष। रुद्र की आंख में से गिरा रुद्र वत्ता अक्ष रुद्र मैंने शी, जो दुख का जो मूल होता है उसको सहार करने वाले भोले बाबा का नाम रुद्र। अक्ष मैंने गिरा नाम पड़ा है रुद्राक्ष। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जो कोई रुद्राक्ष पहरेगा उसको बहुत फल मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत लाभ होगा, और जो कोई मुझे भी चढ़ाएगा और रुद्राक्ष की कोई भी पूजा करेगा उसकी महिमा उसका फल कोई नहीं गा सकता। ऐसी रुद्राक्ष की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। कम से कम एक रुद्राक्ष

चलाया, एक ही रुद्राक्ष हम बह। भोलेनाथ का ये प्रसाद है और एक रुद्राक्ष पहरे, हमारा सब ओर से, सब रीति से, सब तरीका से ठीक ठाक हो जाता है और जो कोई हमारी मनोकामना है वो सब पूर्ण होता है। ऐसे रुद्राक्ष की बड़ी भारी महिमा। फिर भोलेनाथ ने तो आशीर्वाद दिया, सारे ब्रह्मांड में बहुत जगह पर ये प्रकट हुए पृथ्वी लोक, स्थल का भी नाम दिया गया है लेकिन बहुत जगह पर है। ऐसे रुद्राक्ष का चार प्रकार गाया गया, सफेद रंग का, लाल रंग का, पीला रंग का और काला रंग का। ऐसे हमारे समाज की व्यवस्था भी चार प्रकार की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे अपने अपने जाति के मुताबिक रुद्राक्ष लगाए तो और फल मिलता है। अगर ऐसा न भी करे और जो प्रसाद मिले उसमें लगा ले तो भी लाभ लाभ लाभ होता है, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत लाभ। रुद्राक्ष पहनने से मुक्ति मिल जाती है और रुद्राक्ष पहनने से श्याम सदाशिव भगवान शिव जी का दर्शन हो जाता है। रुद्राक्ष पहनने से धन दौलत माल मिलकर सब मिल जाती है। रुद्राक्ष पहनने से बहुत सुख शांति और आनंद मिलता है। रुद्राक्ष पहनने से कई हमारे दर्द भाग जाते हैं। रुद्राक्ष पहनने से हमारी शारीरिक ताकत बढ़ जाती है। रुद्राक्ष पहनने से हमारा मनोबल दृढ़ हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है और रुद्राक्ष पहनने से हम बहुत आगे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत महिमा है। इस संबंध में हमारे शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, देवी पुराण में, कई विधिविध पुराण में, कई शास्त्रों में तो बहुत महिमा गाई गई है, उसमें तो महिमा है ही। और फिर रुद्राक्ष उपनिषद में भी रुद्राक्ष की बहुत महिमा गाई गई। हमारे यहां बहुत उपनिषद है, उसमें एक रुद्राक्ष उपनिषद है, उसमें रुद्राक्ष की भी महिमा है। उसमें ऐसी महिमा गाई गई है, काशी नाम का एक नगर था और उस नगर में एक राजा रहते थे। वो भी राजा शिव भक्त थे, पहले के राजा महाराजा क्षत्रिय बहुत शिव भक्ति करते थे, भाव भक्ति से, प्रेम से। एक दफा ये राजा घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने फिरने के लिए गया। जंगल में बहुत दूर दूर तक पहुंच गया और वहां एक दृश्य देखा है राजा, कई भूत प्रेत सब आनंद करते थे, आनंद आनंदोत्सव मनाते, आनंद में सब नाचते थे, गाते थे। राजा ने देखा ये सब भूत प्रेत है, सब आनंद करते हैं। राजा ने पूछा ये सब क्या बात है। सबने दिखाई, राजा हमारी पुत्री का ये विवाह हो रहा है, कल ही विवाह होने वाला है और उस उत्सव का हम आनंद मनाते हैं। राजा ने पूछा तो वो किसके साथ उसका विवाह होगा और ये सब क्या है। सब ने दिखाया, आपके नगर में एक युवक रहता है और कल घोड़ा पर बैठकर उसको पानी पाने के लिए जाएगा और एक स्थल बताया, उस स्थल पर वो गिर जाएगा और उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसको हम भूत बनाएंगे और हमारी ये पुत्री का विवाह वो भूत के साथ हम करवाएंगे। राजा

तो ये सुनकर तो बहुत आश्चर्य हुआ। ये सब बात है, राजा आए अपने नगर में और जो समय बताया था, जो स्थल बताया था, दूसरे दिन राजा वहां खड़ा हुआ और वो ही युवक घोड़ा पर बैठकर पानी पाने के लिए जा रहा था, वो ही स्थल आया, ठोस लग गई, घोड़ा गिर गया, युवक गिर गया, युवक की मृत्यु हो गई। राजा ने ये सब दृश्य देखा, राजा का तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये बात, चलो हम जंगल में देख जाए और देखे। फौरन ही राजा जंगल में आए और वहां सब भूत प्रेत जो परिवार थे सब रोने लगे, रुदन करने लगे। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे आनंद की बात है, और क्या है सब, कल जो बताया वही तो हुआ है सब, और सब रुदन कर रहे, क्या सब बात है, कोई समझ में नहीं आती क्या। राजा ने सबको पूछा, क्या कुछ कुछ तकलीफ है, क्या है कुछ, आनंद की बात कर रहे थे और आज ये सब रोने लगे, क्या है सब। सब भूत प्रेतों ने बताया, हमारा जो आयोजन था उसको भूत बनाने का, लेकिन जिस स्थल पर उसकी मृत्यु हुई उस स्थल के भीतर पृथ्वी के अंदर एक रुद्राक्ष था, और रुद्राक्ष पर उसकी मृत्यु हुई तो उसको हम भूत नहीं बना सके। और भगवान भोलेनाथ के दूत आए, बबम बम बबम बम बबम बम गाते हुए, अलग अलग अलग पुकारते हुए आए और हमारी कुछ सुनी नहीं। फौरन ही उस व्यक्ति को लेकर भगवान शिव के दरबार में पहुंचे। और राजा, हमने प्लान किया था उसको भूत बनाने के, लेकिन हमारी वहां कुछ चली नहीं, रुद्राक्ष पर उसकी मृत्यु हुई तो भोलेनाथ के दरबार में वो चले गए। राजा ने ये सब बात सुनकर बहुत आनंद हुआ, ओ ये सब रुद्राक्ष की ऐसी महिमा। फिर राजा ने काशी नगर में आकर ऐसा आदेश दिया, चारों रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष का पेड़ बोया जाए, और सब रुद्राक्ष पहरे भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाए, उसकी पूजा करे, शिव की महिमा बढ़ाए, शिव की महिमा गाए, और सब रुद्राक्ष पहने, चारों ओर आदेश दिया। तो देखिए ये रुद्राक्ष की महिमा है, रुद्राक्ष पहरा नहीं है, देखा नहीं है, स्पर्श नहीं किया है, वो पृथ्वी में था, उस पर जिसकी मृत्यु हुई तो वो भूत नहीं बना, भूतनाथ के दरबार में चले गए। कैसी रुद्राक्ष की महिमा है, हमारे भोलेनाथ को ये रुद्राक्ष बहुत प्रिय है और रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। शिव महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुख गाए गए, 14 प्रकार, 14 मुख वाले या 14 प्रकार, ऐसी महिमा गाई गई। रुद्राक्ष उपनिषद में तो 21 प्रकार के रुद्राक्ष गाए गए, शिव महापुराण में 14 प्रकार के रुद्राक्ष गाए गए हैं। उसमें से हम एक एक का थोड़ा विस्तार से देखे क्या महिमा है। एक मुख वाला रुद्राक्ष जो पहरेगा, उसकी पूजा करेगा, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएगा, उस पर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, उसको मोक्ष मिलेगा, धन लक्ष्मी मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा और सब कामनाओं पूर्ण हो जाएगी। ब्रह्महत्या का अगर पाप किया गया हो, ऐसा

बड़ा पाप जो किया गया हो, वो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से उसका सब पाप भस्म हो जाए। एक मुखी रुद्राक्ष की बहुत महिमा है, वो साक्षात शिव स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष कहीं भी नहीं मिलता है, ऐसे संतों के मुख से सुना है कि एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल में है। शिवरात्रि के दिन में जब पशुपति महादेव की रात में जब पूजा होती है तब एक मुखी रुद्राक्ष मिलता, और अगर ये प्रसाद में मिल जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक मुखी की नकल मत खरीदना, और मिलता भी नहीं है तो एक मुखी रुद्राक्ष की ऐसे बड़ी भारी महिमा गाई गई है। और दो मुख वाले रुद्राक्ष गौरी शंकर के स्वरूप पे माने गए हैं। महादेव का स्वरूप है, इच्छित फल की प्राप्ति होती है। शिव पार्वती स्वरूप है, शिव शक्ति दोनों साथ में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दो मुखी रुद्राक्ष की भी बहुत महिमा गाई गई है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष का प्रभाव तो और ही है, और सर्व विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। अगर विद्या की प्राप्ति करना हो, हम सब विद्या की पिपासु, हमारे धर्म में बुढ़ा हुए फिर भी विद्या की साधना कर, उपासना कर, और वही विद्या से साविद्याया विमुक्तये, साविद्याया विमुक्तये। हे देवाजी देव महादेव, हमें ऐसी विद्या दो हमारी मुक्ति हो। तीन मुख वाला रुद्राक्ष पहनने से विद्या मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है। पहनने से उसका स्पर्श होने से शरीर में से कोई भीतरी ताकत प्रकट हो जाती है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष पहनने से बहुत ज्ञान हो जाता है। छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना गया है। तो ये तीन मुख वाला रुद्राक्ष की महिमा, और चार मुख वाला रुद्राक्ष जो ब्रह्मा रूप है। ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा गया है। एक मुख तो भगवान शिव जी ने भैरव के रूप में काटा गया, चार मुख बचा। जो चार मुखी रुद्राक्ष पहरेगा उस पर भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे। और चार प्रकार का हमारा जो पुरुषार्थ है वो उसको मिलेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार प्रकार का जो पुरुषार्थ है वो चारे चार प्रकार का पुरुषार्थ मिलेगा। धर्म क्या है उसका पता हमें चलता है, और अर्थ क्या, काम क्या, मोक्ष क्या, ये सब का हमें पता चल जाता है। चार मुख वाला रुद्राक्ष की ऐसी बड़ी भारी महिमा गाई गई, संतति की प्राप्ति भी हो जाती। अगर पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति, पुत्र ही न कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पुत्र की इच्छा हो तो शिव का प्रसाद रुद्राक्ष पहरने से पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती। पांच मुख वाला रुद्राक्ष वो पंचानन भगवान शिव का स्वरूप माना गया। पांच मुख वाला रुद्राक्ष जो पहरेगा उस पर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएगी, पंच मुख वाला भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएगी। पंचानन ठहरे हैं हमारे भोले बाबा, और मुक्ति का भी चार पांच प्रकार माना गया, चार वत्ता एक पांच, मुक्ति का भी पांच प्रकार है। और पांच प्रकार की मुक्ति भी पांच मुखी रुद्राक्ष पहरने से मिल जाती है। और ए रुद्राक्ष पहनने से हमारा जो समय है, हमारा ए हमारी

ये जी सांस है ये सब बहुत कीमती हो जाती है, और एक एक पल एक एक बात हमारी बड़ी भारी कीमत वाली हो जाती है। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने गाया है क्या, तेरी घड़िया अमूलक जाय, मुख से रटले नमः शिवाय।

0: फेरी घड़िया अमूलक जा। तो ये रुद्राक्ष पहनने से हमारा सब जीवन अच्छा हो जाता है और मुख में से अपने आप ओम नमः शिवाय का गुंजन हो जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष की ये महिमा गाई गई है। छह मुख वाला रुद्राक्ष जो कोई पहरेगा भगवान शिव जी को चढ़ाएगा वो रुद्र रूप बन जाएगा और षडानन भगवान शिव जी का जो संतान है कार्तिकी स्वरूप बन जाए। छह मुख वाला होगा। दाहिने कर में पहरने का उसका बहुत महिमा ये धारण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। षडानन कार्तिकी भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत शक्ति दे देते हैं। कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है, षडान स्वरूप माना गया है। छह मुखी रुद्राक्ष है वो। सात मुख वाला रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप माना गया है। काम देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे सब कामना भी पूर्ण हो जाती है, दान लक्ष्मी इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है। सात मुख वाला रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष वो भैरव स्वरूप माना गया। भैरव भी भगवान शिव जी के भ्रकुटी मां से उत्पन्न हुए हैं और काशी नगरी के अधिपति है और कोटवाली भी करते हैं और जो जीव काशी नगरी में प्रवेश करता है उसका पाप का भक्षण हमारे भैरव जी करते हैं। और जो कोई पहरता है अपने पास में रखता है पूजा कोई भी करता है उस पर भगवान भैरव जी प्रसन्न हो जाते हैं और आखिर में शिव के दरबार में पहुंचा देते हैं। ऐसे आठ मुखी रुद्राक्ष की भी बहु महिमा है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष नौ दुर्गा कालिका चामुंडा मां दुर्गा भवानी मंगला वैष्णव देवी का स्वरूप माना गया। जो कोई नौ मुखी रुद्राक्ष पहरेगा अपने पास रखेगा पूजा करेगा उस पर नौ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। एक माँ प्रसन्न होने से बालक का लालन पालन होता है और ठीक ठाक से वो बड़ा हो जाता है। माँ की बड़ी ममता भला कौन कह सके। और नौ मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसको उस पर तो नौ दुर्गा नौ माँ हो और नौ जगदम्बा प्रसन्न हो जाए जीवात्मा का बहु।
1: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग और ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं FM बालताल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz के अलावा DTH और मोबाइल ऐप एवं न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के द्वारा भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। श्रोताओं क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए आप हमारे संग बने हैं और हम जो है क्षण क्षण के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यहाँ पर अभी जो है कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी।

0: संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदरोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। होम मिनिस्टर Minister Amit Shah has said that the government is fully prepared to discuss any issue, including the students' issue, and answer any questions.

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। और आपको बता दें, 3 जुलाई 2026 को जो है ये यात्रा, इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई जो 57 दिवसीय होती है। और इस 57 दिवसीय श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में बता दें आपको कि बालताल और चंदनवारी दोनों मार्गों से ये एक साथ शुरू हुई थी 3 जुलाई से। और 9 जुलाई की बात, माफ़ कीजिए, हम आपसे कहेंगे कि 9 अगस्त से जो है बारिश और प्रतिकूल मौसम पर पूर्वानुमान के बाद पटरियों, मार्गों की मरम्मत, रखरखाव के लिए दोनों मार्गों पर नियमित यात्रा निलंबित कर दी गई थी। और फिर आती है छड़ी मुबारक की बारी, अब जो कि समापन होता है इस पवित्र यात्रा का, यानी कि समापन जो है 28 अगस्त 2026 को हो जाता है इसका। छड़ी मुबारक पारंपरिक पहलगाम मार्ग से श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिवस पर इस पवित्र गुफा तक पहुंचती है। यूं इस पवित्र यात्रा का समापन हो जाता है।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 जुलाई 2026 को 57 दिवसीय श्री अमरनाथ जी यात्रा का आरंभ हुआ था, जो कि बालटाल और चंद्रबारी दोनों मार्गों से एक साथ ही जो है इसका आरंभ हुआ था। और 9 अगस्त से भारी वर्षा और प्रतिकूल मौसम के बाद जो है पटरियों की मरम्मत के लिए दोनों मार्गों पर नियमित यात्रा निलंबित कर दी गई थी। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बीआरओ द्वारा रास्ते की मरम्मत और मौसम की चेतावनी के कारण यही कि 9 अगस्त 2026 से बालटाल और चंदनवारी दोनों रास्तों पर नियमित तीर्थ यात्रा रोकी हुई है। और अब छड़ी मुबारक की बात करें तो छड़ी मुबारक सिर्फ पारंपरिक पहलगाम रास्ते से जाएगी।

और 28 अगस्त को दो यानी कि 28 अगस्त 2026 को ये 2026 की इस पवित्र यात्रा का औपचारिक समापन होगा। पवित्र छड़ी मुबारक जो है श्रीनगर से दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी जी की देखरेख में है। साधुओं संतों और उनके साथ आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी जो है ज़रूरी व्यवस्थाएं जो है की गई हैं और यूटी प्रशासन के साथ मिलकर वो व्यवस्थाएं जो है अभी भी की जा रही हैं और श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए समय समय पर जारी सभी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग जो आप सुन पा रहे हैं एफएम बालताल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एवं डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर आराधना चैनल के माध्यम से भी हम आपके संग जुड़े हैं और इसके अलावा वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप और हम जुड़े हुए हैं। अब से बस श्रोताओं कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत सब मामलात पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने दें। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखनांदाजी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर सवान हयात पढ़ने पर जोर दिया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया के शॉर्टकट कल्चर के खिलाफ खबरदार किया। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ गई है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम का जज्बा कौमी शनाख्त को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने फ्लाई स्कीमों की खातिर पेट्रोल और डीजल पर यतीम और बेवा सेस नाफिज किया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में शदीद बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने से 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। और शतरंज में अमेरिका में सिंक्वीफील्ड कप के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को हरा दिया।

0: अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि सरकार तलबा के मसले और पार्लियामेंट में अराकीन की तरफ से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने और बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। वो पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है। मरकजी वजीर दाखला ने कहा है कि अपोजिशन बहस के लिए दिन में 2 बजे तक स्पीकर को नोटिस दे सकती है ताकि आज 3 बजे बहस शुरू की जा सके। जनाब अमित शाह ने कहा कि अगर बहस शुरू होती है तो वह ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे और हर मेंबर की बात सुनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बहस मुकम्मल होने के बाद वो कल 3 बजे बहस का जवाब देने को तैयार हैं।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: जनाब शाह ने यह भी कहा कि पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पहले ही ये बात वाजे तौर पर कह चुके हैं कि सरकार नीट इम्तहानात से मुतालिक तलबा के एहतजाज से वाबस्ता सभी पहलुओं पर बहस के लिए तैयार है। ताहम जनाब शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ऐवान को काम नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संजीदा मामले पर पार्लियामानी तरीक़ेकार के मुताबिक बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ मामलों पर शोरगुल की वजह से दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में मुबैना गड़बड़ का मामला उठाया। जनाब बिरला ने कहा कि आज मुल्क नौजवानों का बैन अलावामी दिन मना रहा है और मुल्क के नौजवान भी ये चाहते हैं कि उनसे मुतालिक मामलात पर बहस की जाए।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो।
0: स्पीकर ने अपोजिशन मेंबरों पर जोर दिया कि वो पार्लियामेंट की अजमत और वकार को नुकसान न पहुंचाएं और सवालों का वक्फा चलाने दें, लेकिन अपोजिशन ने अपनी मांग पर जोर देना शुरू कर दिया। अपोजिशन की जानिब से शोरगुल जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जब राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तो मुतालिक वजीरों ने अपनी वजारत की दस्तावेजात ऐवान में पेश की। शोरगुल के दौरान चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फा सिफर का आगाज किया और इस दौरान सीपीआईएम के मेंबर जॉन ब्रिटास ने ऐवान में एक दूसरे मेंबर की तरफ से उनके खिलाफ मुबैना तौर पर तोहिनामेज जुमले इस्तेमाल करने का मामला उठाया। इस पर राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अराकीन को मशवरा दिया कि वो नहायत मोहतात रहें और अपने 7 मेंबरों के जज्बात को ठेस न पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो जिसे भी पसंद करते हैं उसकी सवाने हयात पढ़ें और रील्स और सोशल मीडिया के दौर में शॉर्टकट से गुरेज करें। उन्होंने विकसित भारत मिशन को आगे ले जाने की खातिर नौजवानों को खुद को वक्फ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने एक ऐसी नस्ल पर जोर दिया जो मुश्किलों में साबित कदम रहती है और कौमी खुद किफालत की राह तलाश करने के लिए हिम्मत और हौसला बरकरार रखती है।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा किया। इस सवाने हयात में जनाब कोविंद के गैर मामूली सफर हयात का बगौर जायजा लिया गया है, जिसमें उनके तजर्बात, जिद्दोजहद और उनके इब्तदाई बरसों की उसूलियाबियों से लेकर उनकी सरकर्दा आवामी ज़िंदगी और भारत के 14वें सदर जमहूरिया की हैसियत से उनकी खिदमात का अहाता किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीवी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम के जज्बे ने भारत की जिद्दोजहद आज़ादी को तहरीक दी और आज भी यह कौमी शनाख्त को मुस्तहकम कर रहा है।

0: debris to fall on 2 to 3 houses. Following the landslide, Mumbai Mayor Ritu Tavde and Additional Municipal Commissioner of Eastern Suburbs Dr. Avinash Dhakne visited the affected site to assess the situation and monitor the ongoing rescue efforts. Rescue operations are being carried out jointly by personnel from the Mumbai Fire Brigade, Mumbai Police and the National Disaster Response Force. With Pratna, this is Sweetie Jain for Akashwani News, Mumbai.
1: A fresh low-pressure area has formed over the northwest Bay of Bengal near the Orissa coast, prompting the Indian Meteorological Department to forecast enhanced rainfall activity over Orissa. Meanwhile, the IMD has issued an orange colour warning over heavy to very heavy rainfall at isolated places over Rajasthan, Gangetic, West Bengal, Madhya Maharashtra and Orissa today. The Met Department predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Rajasthan till tomorrow. Indian Grandmaster R. Pragananda defeated Javakir Sindorov in a second round match of the Sinkfield Cup in St. Louis, United States. It is his first victory in the tournament, which is the penultimate event of the Grand Chess Tour. Throughout the game, Pragananda kept pressing and eventually turned the drawn position into a winning one. Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note in the afternoon session today. The Sensex lost 539 points to 77,615, while the Nifty shed 173 points to 24,299 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says government ready to discuss all the issues, urges opposition to allow parliament to function. Prime Minister Narendra Modi urges youth to read autobiographies, warns against shortcut culture of reels and social media. Har Ghar Tiranga campaign gains momentum. Himachal Pradesh government imposes orphan and widow cess on petrol and diesel to fund welfare schemes. 6 persons killed, 4 injured after landslide hit Mumbai's Ghatkopar area due to heavy rain. And in chess, Indian Grandmaster Pragananda defeats Uzbekistan's Javakir Sindorov in second round match of Sinkfield Cup in United States. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
3: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
2: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
3: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार।

0: तैयार हैं और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान

0: सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात की गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ, आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी।

0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये विशेष प्रसारण FM बालताल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो है उपलब्ध है।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और आपको बता दें कि 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा यानी कि 3 जुलाई 2026 से इस पवित्र यात्रा का आरंभ हुआ था। 57 दिवसीय श्री अमरनाथ यात्रा बालताल और चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से एक साथ जो है इसका प्रारंभ हुआ था। और 9 अगस्त से जो बारिशों की वजह से जो वर्षाएं हुई और प्रतिकूल मौसम और पूर्वानुमान के बाद पटरियों की मरम्मत और देखरेख के लिए दोनों मार्गों पर नियमित यात्रा निलंबित जो है कर दी गई थी। और इसके बाद जो है हम बात करें कि बीआरओ द्वारा रास्तों की मरम्मत, मार्गों की मरम्मत और मौसम की चेतावनी के कारण 9 अगस्त 2026 से बालताल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों पर नियमित तीर्थ यात्रा को जो है रोका गया, वो रुकी हुई है। छड़ी मुबारक सिर्फ जिसका आज एक हम ये कहेंगे कि एक नया अध्याय जो है इस यात्रा का शुरू हो चुका है। और छड़ी मुबारक सिर्फ पारंपरिक पहलगाम रास्ते से ही उसी मार्ग से जाएगी और 28 अगस्त 2026 को ये इस साल यानी 2026 की ये यात्रा का औपचारिक समापन होगा। पवित्र छड़ी मुबारक जो है श्रीनगर के दशनामी अखाड़े के महंत दीपिंदर गिरिजी की देखरेख में है और साधुओं और संतों और उनके साथ आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं जो है यूटी प्रशासन के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। और श्रद्धालुओं हम बात करें, श्रद्धालुओं को भी जो है सलाह दी जाती है कि वे यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए समय समय पर जारी सभी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज से जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा के एक जो है हम ये कहेंगे कि नया अध्याय का प्रारंभ हुआ। आज से छड़ी मुबारक जो है उसकी पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई और आज महंत दीपिंदर गिरी जी के नेतृत्व में दशनामी अखाड़ा से जो है इस छड़ी मुबारक को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में ले जाया गया और जहाँ पर उसकी पूजा अर्चना होगी और उसके बाद उसे वहाँ पर पवित्र स्थान में पूजा अर्चना के बाद जो है दर्शन के लिए रखा जा रहा है।

श्रोताओ, आपको बता दें कि इस छड़ी मुबारक को फिर से यानी कि पूजा अर्चना के बाद जो है, दर्शन के बाद आज जो है शाम को शंकराचार्य मंदिर से वापस इसको दशनामी अखाड़ा जो है लिया जाएगा। और कल की बात करें तो कल यानी कि 13 अगस्त को फिर से इसकी एक यात्रा जो है, अभी तो चल रही है पवित्र यात्रा इसकी चल रही है, और कल दशनामी अखाड़ा से इस छड़ी मुबारक को लिया जाएगा शारिका भवानी मंदिर, जहाँ पे मुख्य पूजा अर्चनाएं की जाएंगी, और फिर शाम को इस छड़ी मुबारक को वापस दशनामी अखाड़ा जो है पूजा अर्चनाओं के बाद लिया जाएगा।

बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और अब जो है पवित्र गुफा के महत्व के बारे में आपसे जो है साझा करते हैं। आपको बता दें कि ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध श्लोक है 1:7, जिसका अर्थ है परम सत्य एक ही है, जिसे ऋषि मुनि अनेक नामों से पुकारते हैं। ईश्वर यानी कि परमेश्वर के 3 रूप माने जाते हैं जो संसार का संचालन करते हैं। इसे त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचयिता, विष्णु यानी जीवन का पालन पोषण करने वाले, और शिव या महेश यानी जो पवित्रता और अच्छाई को बनाए रखते हैं तथा बुराई का विनाश करते हैं। ऋग्वेद में शिव जी को रुद्र कहा गया है, जैसा कि इस हम ये कहेंगे कि एक श्लोक में कहा गया है कि हम त्र्यंबक यानी रुद्र की पूजा करते हैं, जो सुगंध फैलाते हैं और जीवन शक्ति का पोषण करते हैं। वे मुझे नश्वर जीवन यानी मृत्यु लोक के बंधन से वैसे ही मुक्त करें जैसे खीरा अपनी बेल से अलग होता है, लेकिन मुझे अमृता से दूर न करें, यानी मुझे अमरता से दूर न करें। यजुर्वेद में शिवजी का वर्णित है कि हम ये कहें कि उसमें वर्णन एक तपस्वी योद्धा के रूप में किया गया है जो मृग चर्म यानी हिरण की खाल धारण करते हैं और त्रिशूल रखते हैं और सत्यन शिवन सुंदरम के सिद्धांत के अनुसार जीवन के 3 पहलू वहाँ पर बताए गए हैं। सत्य यानी कल्याणकारी, शुभ शिव, और सौंदर्य यानी सुंदरम अच्छे कर्म करने की आंतरिक शक्ति पाने के लिए भी शिव जी की पूजा की जाती है, जैसा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी प्रार्थना की है। वो कहते हैं अपनी प्रार्थना में, हे शिव जी, मुझे ये वरदान दें कि मैं कभी भी अच्छे कर्मों से विमुख ना हों, बुराई से लड़ते समय मैं कभी न डरूं और निश्चित रूप से विजय प्राप्त करूं।

श्रोताओं, इस प्रसारण में अभी बात हो रही है पवित्र गुफा से जुड़ी। आपको बता दें कि शिव जी एक जीवित देवता है। भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ यानी ऋग्वेद में भजनों के माध्यम से उनकी हम ये कहेंगे कि उपस्थिति का जो है वर्णन किया गया है। वैदिक कथाएं, रीति रिवाज और खगोल विज्ञान भी समय की शुरुआत से ही उनके अस्तित्व की गवाही देते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोजों से प्राचीन भारत में शिवजी पूजा की पुष्टि होती है। पुराने ग्रंथों के अनुसार उनके तीन निवास यानी कि तीन स्थान बताए गए हैं। एक है कैलाश पर्वत, दूसरा है लोहित गिरी जिसके नीचे से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और तीसरा है मुजवान पर्वत। और आपको बता दें यहाँ पर कि श्री अमरनाथ जी गुफा का विशेष महत्व है। ये वही गुफा है जिसे भोले शंकर ने माँ पार्वती को अमृता और ब्रह्मांड की रचना के रहस्य बताने के लिए चुना था। कहानी कुछ इस तरह से है कि सदियों पहले माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि उन्होंने सिरों की माला यानी मुंड माला पहनना क्यों और कब से शुरू किया। भोले शंकर जी ने जवाब दिया कि जब भी तुम जन्म लेती हो मैं अपनी माला में एक और सिर जोड़ देता हूँ। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर हर बार नष्ट हो जाता है और मैं बार बार मरती हूँ, लेकिन आप अमर हैं, कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। भोले शंकर जी ने जवाब दिया कि ये अमर कथा के कारण है। माता पार्वती ने उस रहस्य को जानने की जिद की और शिव जी लंबे समय तक इसे टालते रहे। आखिरकार माँ पार्वती जी की लगातार मांग पर उन्होंने अमरता का रहस्य बताने का मन बना लिया। वह एक ऐसी सुनसान जगह की ओर चल पड़े जहाँ कोई भी जीव उन्हें सुन न सके। उन्होंने अमरनाथ गुफा को चुना। इसकी तैयारी में उन्होंने अपने नंदी, वो बैल जिस पर वे सवारी करते थे, को पहलगाम यानी बेलगांव में छोड़ दिया। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त कर दिया और फिर शेषनाग झील के किनारे उन्होंने सांपों को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश जी को महागुणस पर्वत यानी महागणेश पहाड़ी पर छोड़ने का फैसला किया और फिर पंचतरणी में शिव जी ने उन पांच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पीछे छोड़ दिया, जिनसे जीवों का निर्माण होता है। वे इन तत्वों के स्वामी हैं। माना जाता है कि सांसारिक दुनिया का त्याग करने के प्रतीक के रूप में शिव जी और माता पार्वती ने तांडव का नृत्य भी किया था।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और हम भोले बाबा यानी कि शंकर जी की बात कर रहे थे। और जब आपको बता दें आगे कि जब इन सब जगहों को पीछे छोड़कर भोले शंकर जी ने माता पार्वती जी के साथ पवित्र अमरनाथ गुफा में जब पहुँचे तो भगवान शिव जी ने हिरण की खाल पर बैठकर समाधि ली और ध्यान मगन हो गए, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी जीव अमर कथा न सुन सके। उन्होंने कलग्नि नाम के रुद्र को पैदा किया और उन्हें पवित्र गुफा के अंदर और आसपास के सभी जीवों को ख़त्म करने के लिए आग फैलाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताना शुरू किया, लेकिन संयोग से हिरण की खाल के नीचे पड़ा एक अंडा सुरक्षित बच गया। माना जाता है कि ये वही निर्जीव था और साथ ही वह शिव पार्वती जी के आसन यानी के बिस्तर पर सुरक्षित था। इस अंडे से निकले कबूतरों के जोड़े ने अमरता का रहस्य अमर कथा जो है सुनी और अमर हो गए। कई तीर्थयात्री बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग यानी शिव जी के प्रतीक के दर्शन करने के लिए कठिन रास्तों पर चलते हुए कबूतरों के उस जोड़े को देखने की बात भी करते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप बने हुए हैं और हम गुफा के पवित्र गुफा के महत्व के बारे में बात कर रहे थे और शिव जी की अमर कथा भी आप तक पहुंचाई जो उन्होंने माता पार्वती को सुनाई। श्रोताओं, सदियों से लाखों महान और हम ये कहेंगे आम लोग, बुजुर्ग, बालक, युवा, उन्होंने जो है गुफा तक पहुंचने के लिए कठिन और थका देने वाली यात्रा की है। इनमें सबसे जो खास हैं उनमें स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने 1898 में पवित्र गुफा के दर्शन किए, स्वामी रामतीर्थ और सबसे बढ़कर महान संत स्वामी शंकराचार्य जी, जिन्होंने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए दक्षिण से यात्रा की थी। पवित्र गुफा के स्वामी विवेकानंद की यात्रा के बारे में मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, अपनी किताब नोट्स ऑन द वांडरिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में दिलचस्प जानकारी देते हुए वे कहती हैं कि गुफा के अंदर स्वामी जी इतने भावुक हो गए थे कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वे गहरी भावना के कारण बेहोश हो गए। सिस्टर निवेदिता ये भी लिखती हैं कि वे उस जगह बहुत, वो जगह जो है बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसमें एक कैथेड्रल यानी कि बड़ा सा चर्च आ सकता था, समा सकता था और बर्फ़ के विशाल शिवजी सबसे गहरे अंधेरे वाले कोने में थे, जो पवित्रता के साथ अपने आधार पर विराजमान थे। वे कहती हैं कि स्वामी जी ने उन्हें बताया कि उन्हें गुफा में एक अजीब और रहस्यमयी अनुभव हुआ। भगवान शिव जी खुद उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ये वरदान दिया कि जब भी वे चाहें तब उनकी मृत्यु होगी।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संबंध में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं बालताल मार्ग से FM 103.7 MHz, पहलगाम मार्ग पे FM 100.1 MHz। आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं, आराधना चैनल न्यूज़ ऑन AIR। और आपको बता दें कि साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी।

श्रोताओं, पौराणिक कथा यानी कि आस्था की एक यात्रा, हिमालय की तीर्थ यात्राएं सबसे पुरानी व्यवस्थित यात्रा प्रणाली है, जिन्हें समय के साथ हिंदू ऋषियों ने विकसित किया और जो घूमने फिरने, रोमांच और आध्यात्मिकता की भावना को दर्शाती हैं। आपको बता दें कि पवित्र त्रिमूर्ति में से एक शिवजी, जो कि एक जीवित देवता है, भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र पुस्तक ऋग्वेद अपने भजनों में उनकी उपस्थिति का वर्णन करते हैं। वैदिक कथाएं, रीति रिवाज और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान भी समय की शुरुआत से ही उनके अस्तित्व की गवाही देते हैं। माना जाता है कि शिवजी ने हिमालय को अपना घर बनाया था। उन्होंने न तो अपने लिए और ना ही अपनी प्रिय पत्नी के लिए कोई घर या आश्रय बनाया। वे एक तपस्वी थे, फिर भी विवाहित थे। वे दोनों ही रूपों में रह सकते थे क्योंकि वे जंगल में क्रीड़ा करने वाले या बादलों पर आराम करने वाले जंगली देवताओं में से थे। हम ये कहेंगे कि जंगली देवता थे। कहा जाता है कि शिवजी ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को सृष्टि का रहस्य बताया था। उन्हें पता नहीं चला, लेकिन कबूतरों के एक जोड़े ने ये बातचीत सुन ली और रहस्य जानकर वे बार बार जन्म लेते रहे और उन्होंने गुफा को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। पर कई सारे तीर्थयात्री बर्फ के लिंग यानी कि शिवजी का प्रतीक जो है, उनके दर्शन के लिए कठिन रास्ते पर चलते हुए कबूतरों के उस जोड़े को देखने की बात भी बताते हैं। श्रावण यानी जुलाई से अगस्त के महीने में अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस अद्भुत तीर्थ स्थल पर उमड़ पड़ते हैं, जहां लिंग के रूप में शिवजी की आकृति प्राकृतिक रूप से बर्फ के खंभे जैसे बनती है और जो चंद्रमा के साथ घटती बढ़ती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इसके बगल में बर्फ के दो और लिंग हैं, माता पार्वती और उनके पुत्र श्री गणेश जी के।

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और अब जो है हम आपके साथ साझा करेंगे कि पवित्र गुफा की खोज जो है कैसे हुई। श्रोताओं, एक पुरानी कहानी के अनुसार बुट्टा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे को एक साधु ने कोयले की एक बोरी दी थी। घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उस बोरी में असल में सोना था। बहुत खुश होकर बुट्टा मलिक उस साधु को ढूंढने और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए वापस गए, लेकिन जहां वे मिले थे वहां उन्हें एक गुफा मिली और आगे चलकर यह जगह सभी आस्था रखने वालों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। श्रोताओं, आज भी तीर्थ यात्रियों द्वारा दिए गए दान का कुछ हिस्सा बुट्टा मलिक के वंशजों को दिया जाता है और बाकी हिस्सा उस ट्रस्ट को दिया जाता है जो इस पवित्र स्थल का प्रबंधन करते हैं। एक और कहानी के अनुसार जब कश्यप ऋषि जी के ने कश्मीर घाटी से पानी निकाला, जो कि माना जाता है कि ये कभी एक विशाल झील हुआ करती थी, तो हिमालय की यात्रा कर रहे भृगु ऋषि जी को वह गुफा और शिवलिंग मिला। जब लोगों को उस शिवलिंग के बारे में पता चला तो अमरनाथ जी उनके लिए शिवजी का निवास स्थान और तीर्थ स्थल बन गया। पंडित कल्हण जी ने राजतरंगनी में इस पवित्र गुफा का जिक्र किया।

किया है। उनके अनुसार राजा रामदेव ने अयांश राजा सुखदेव को कैद कर लिया था और अमरनाथ जी के पहाड़ों के बीच लुदर नदी में डुबो दिया था और साथ ही लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा संधिमती ने पवित्र बर्फीले शिवलिंग के दर्शन किए थे। इससे ये पता चलता है

पाया जाता है, जो मिलता है। और कहा जाता है कि कश्मीर के नेक शासक सुल्तान जैनुल आबदीन ने भी इस पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। अमरनाथ जी की खोज से जुड़ी कहानियाँ और इतिहास, चाहे जो भी हो, आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जितना रोमांचक है, उतना ही मुश्किल भी, कठिन भी। फिर भी हर साल हजारों श्रद्धालु हिमालय में स्थित शिवजी के इस प्रसिद्ध धाम में उनके दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बहुत ही श्रद्धा के साथ आते हैं।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप हमारे संग बने हुए हैं। एफएम बालताल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें डीटीएच पर भी जो है सुन पा रहे हैं, और न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल, और साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर।

श्रोताओं, बने हुए आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और इस पवित्र यात्रा के बारे में आपको बता दें जो कि अब इसका एक नया अध्याय जो है आज से शुरू हो चुका है, यानी महंत दीपिंदर गिरी जी के आचरण में और अन्य साधु संतों के साथ आज शुरू हो चुकी है। आज छड़ी मुबारक जो

है ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में ले जाया गया उसको, जहाँ पर पूजा अर्चना के बाद उसको वापस आज जो है फिर अखाड़ा मंदिर अखाड़ा भवन में जो है लिया जाएगा। और हम आपको बता दें श्रोताओं कि इस यात्रा के बारे में कि अब जबकि महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में आचरण में ये छड़ी मुबारक की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, और अब जो है कोई भी यात्री भगवती नगर से यहाँ की ओर जो है श्रीनगर घाटी की ओर रवाना नहीं किया जाता। और यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत इस हम ये कहेंगे कि 5 लाख के करीब जो है यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यात्रियों ने इस वर्ष भी यात्रा में भाग लिया और बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा में जो है पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए और फिर बाबा के आशीर्वाद पाकर प्रसन्नता पूर्वक वापस लौटते गए और प्रसन्नता के साथ। और हम ये कहेंगे कि प्रशासन ने भी हर एक सुविधा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उपलब्ध कराई और यात्री भी प्रसन्न होकर प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करके इस यात्रा को सफल बनाते रहे। और अब जो है आज से एक यात्रा का एक बहुत ही मुख्य अध्याय जो है शुरू हो चुका है, यानी छड़ी मुबारक की यात्रा जो है आज से शुरू हो चुकी है।

श्रोताओं, 3 जुलाई 2026 को बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों से एक साथ 57 दिनों की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आरंभ हुआ। और फिर अब बात करें 9 अगस्त से बारिशों के वजह से और ख़राब मौसम के चेतावनी के कारण दोनों रास्तों पर मरम्मत कार्य के लिए नियमित यात्रा रोक दी गई। लेकिन यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि छड़ी मुबारक की यात्रा जो है वो जारी है, आज से शुरू हो चुकी है। और इस पवित्र यात्रा का जो कि 57 दिनों पर जो है 57

दिनों की ये श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है, हम आपको बता दें कि इसका समापन जो है वो 28 अगस्त 2026 को होगा और छड़ी मुबारक यानी पारंपरिक पहलगाम मार्ग से श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन पर पवित्र गुफा तक पहुंचेगी, जहां पर इसका विसर्जन होगा। और यूं इस प्रकार

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा के विशेष प्रसारण के संग। और आपको बता दें ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं

0: FM बाल्टा 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR, DTH की आराधना सर्विस और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी जो है हम आप के संग जुड़े हुए हैं। और इस पवित्र, हम ये कहेंगे कि छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा जो है शुरू हो चुकी है, और आपको अब उस यात्रा की भी जो है हम सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब सुनते हैं पवित्र गुफा में रिकॉर्ड की गई आरती और आनंद लेते हैं इस आरती का।
1: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देख, तो उससे पहले प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि घृणी ना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के, अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि घृणी ना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है, इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि घृणी ना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता परभाग्योपजीविषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए? परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: शंकर भगवान की
1: जय।
0: धर्म के
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फाने की
1: जय हो,
0: पार्वती पते
1: हर हर हर महादेव। शिव शंभु ओम निरावलंबस्य ममावलंबम् विभाजिताजेट विभत् कदम्बम् मदीय पापाचलपादजम् प्रवर्तताम् वाचि सदैव बम् बम् महादेव।

0: की
1: जय।
0: सभी भक्तजन आरती आपको बाहर गेट के मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान।
2: श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे साथी इंजीनियर्स मंजूर अहमद नजार और फारूक अहमद डार, और हमारे इस में आप सहायक रहे मोहम्मद सलीम, और मैं आपकी साथी उद्घोषक सायका सलीम, और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री गुलाम रसूल आखून और श्री वसीम फारूक वानी। प्रातः 6:53 पर श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

अब धनुष यज्ञ का समाचार सुनते ही मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ ले जनकपुर की ओर चल देते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाटक की पांचवी कड़ी।

0: जनसमूह को साथ ले अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुंचे।
1: भरत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? अवश्य है, न होता तो सेना क्यों लाते? शायद वे समझते हैं कि राम वन में अकेले हैं, उनको मारकर निष्कंटक राज्य क्यों ना भोगा जाए। आखिर कैकेयी के बेटे हैं ना, लेकिन वे ये नहीं जानते कि सारे देवता और दानव मिलकर भी यदि आए तो राम को नहीं जीत सकते। सैनिकों सावधान हो जाओ, हत बांसो बोरहु तरन, कीजिए घाटा रो। देखता हूं मेरे रहते गंगा कैसे पार करती हैं। ऐसी मृत्यु कब कब मिलती है, और राम के लिए मरने में तो दोनों हाथ लड्डू हैं, यश भी और मुक्ति भी।
2: लाओ मेरा तूड़ी धनुष और कवच उठा लाओ, देर मत करो।
3: जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना के एक एक योद्धा को चुन चुन कर मार डालेंगे। जीते जी पीछे हटने वाले नहीं, सारी धरती को रुंड मुंड से पाट देंगे।
2: युद्ध के बाजे बजने दो।
3: बहुत ही अच्छा शगुन है, रण में अवश्य सफलता मिलेगी।
4: ठहरो, राम ही भरत मनावन जाहीं, सगुन कहीं अस विक्रहु नाहीं। सगुन कहता है कि भरत राम को मनाकर लौटा लाने के लिए बन जा रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, युद्ध का अवसर नहीं आएगा।
1: शायद आप ठीक कहते हैं, नीति कहती है सहसा करे पछताए बिमूढ़ा। भरत का शील स्वभाव जाने बिना लड़ाई की घोषणा करना अपनी ही हानि करना है, इसलिए तुम सब लोग घाट पर डटे रहो, मैं अकेला जाकर सब भेद ले आता हूं।
0: उन्हें इस प्रकार समझा बुझाकर और भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री लेकर वे भरत से मिलने के लिए चले। दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के मुख से ये सुनकर कि राम के सखा निषाद राज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भरत झट रथ से कूद पड़े और उन्हें उठाकर छाती में

0: करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाय मनहु लखन सन भेट भई प्रेमुन हृदय समाय।
1: धन्य धन्य धन्य।
2: श्रृंगवीरपुर का निवासी निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है।
3: कहिए निषाद राज, सब प्रकार से मंगल तो है?
2: प्रभो, आपकी कृपा से मेरे और मेरे करोड़ों कुलों का मंगल ही मंगल है। मेरे जैसे कपटी, कायर, मूर्ख और सब प्रकार से गए बीते को जब से राम ने अपना लिया, तभी से मैं संसार का भूषण बन बैठा हूँ।
3: निषाद की ऐसी प्रीत देखकर और सब लोगों ने भी उन्हें गले से लगा लिया। सब को लेकर वे श्रृंगवीरपुर आए और गंगा के दर्शन कर गदगद हो उठे। करहिं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मज्जनु मांगहिं कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत बोल उठे,
4: माँ गंगे, आपका रेणु सब सुख देने वाला है, काम धेनु के समान है। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि राम और जानकी के चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। निषाद राज, चलो चलकर मुझे वे सब स्थान दिखलाओ जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने शयन किया था, जिससे मेरे नेत्रों को शांति मिले और मन की जलन मिटे।
3: जब भरत जी ने उन स्थानों को देखा तो उनके अंतर से जो प्रीति उमड़ी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
0: चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। वो बार बार राम, सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।
5: Thank you.

0: धिक कह कई अमंगल मूला, भय सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं थिक थिक अघ उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं पापों का समुद्र हूँ, अभागा हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे ही कारण ये सारा बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कुल कलंक करि सृजउ विधाता, साय दोह मोहि कीन कुमाता।
1: नाथ, आप व्यर्थ क्यों अपना जी छोटा कर रहे हैं? आप राम को प्यार करते हैं और राम आपको प्यार करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जिहि मातु कीनी भावरी। ते रात पुने पुने करही, प्रभु सादर सराहना रावरी। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि राम किसी को भी उतना प्रिय नहीं समझते जितना आपको। विश्वास कीजिए, अंत में सब मंगल ही मंगल होगा।
2: निषाद के इस प्रकार बार बार धीरज धराने पर भरत विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे बहुत जल्दी उन्होंने गंगा नदी को पार किया और सीताराम सीताराम रटते हुए प्रयाग पहुंच गए। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी ने भाव विह्वल होकर त्रिवेणी की स्तुति की।

0: अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण जनम जनम रति राम पद यह वरदान न आन।
1: तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बाद गलानी करहु मन माही तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
2: इसके पश्चात भरत जी ने मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हें देखकर यही समझ रहा हूं मानो राम का प्रेम ही तुम्हारा रूप धरे चला आया है। भरत जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। भरद्वाज मुनि के समझाने पर वे कुछ शांत हुए और एक रात वहां बिताकर सवेरा होते ही मुनि को प्रणाम कर वे निषाद राज के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। जैसे साक्षात प्रेम ही दो शरीर धारण किए चला जा रहा हो। राम सखा कर दीन है लागू चलत देह धरी जनु अनुरागु। मार्ग में जो भी भरत को देख लेता ऐसा लगता मानो उसने परम पद पा लिया है। गांव गांव के स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते। प्रेम में मगन हो वे ऐसी अटपटी बातें करते कि मन उमड़ उमड़ पड़ता।
3: राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं।
4: अच्छा,
3: राम लखन सखी हो ही कि नाही। बै बप्पू बरन रूप सोई आली सीलु सनेहो सरिस सम चाली।
4: बेशु न सो सखी सीय न संगा आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेह होई एही भेदा।
3: ना ना, तुझे क्या वो कहानी नहीं मालूम कि किस प्रकार राम को राज तिलक मिलने वाला था और किस प्रकार भरत की माता कैकेयी ने विघ्न डाला। लेकिन सखी भरत तो भरत ही हैं।
4: देखो तो चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज जात मनावन रघुबरही भरत सरिस को आज।
3: हाय, कैकेयी माँ की कोख से ऐसा योगी पुत्र कैसे हुआ।
4: इसमें रानी का क्या दोष, ये सब करतूत तो विधाता की ही है। पर हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। हम ओछे कुलों वाली मलिन कर्म करने वाली बुरे गांव में रहने वाली हमें इनके दर्शन मिले।
3: सच सखी, हमने कोई बड़े ही पुण्य कर रखे थे जिस कारण आज हमें इनके दर्शन हुए।
2: भरत के दर्शन पाकर रास्ते के लोगों के भाग्य खुल गए। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे अच्छे अच्छे शकुन होते जाते थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि राम अवश्य मिलेंगे। प्रेम की मदिरा में सब ऐसे मस्त थे कि मुख से ठीक ठीक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं बिह्वल बचन प्रेम बस बोलहीं। उसी समय निषाद राज ने कहा,
5: नाथ वो देखिए, वो है चित्रकूट पर्वत। उसके समीप ही मंदाकिनी के तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई कुटी बनाकर निवास करते हैं।
6: वो है चित्रकूट पर्वत कामदगिरी। वहां रहते हैं मेरे राम। सीतापति राम की जय। सीतापति राम की जय।
3: नाथ, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपके विरह की तपन से अपनी देह तपाए हुए भरत जी सारा समाज साथ लिए चले आ रहे हैं और सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी।
7: लक्ष्मण, यह स्वप्न कुछ अच्छा नहीं है। जान पड़ता है कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। देखो तो आकाश धूल से भर गया है। पशु पक्षी घबराए हुए आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। बात क्या है?

0: नाथ, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ इधर ही आ रहे हैं।
1: भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं?
0: नाथ, उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है।
1: सेना है तो कहीं भरत मुझे लौटा लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? एक ओर पिता का वचन, दूसरी ओर भरत का प्रेम। लेकिन नहीं, भरत तो सज्जन है, ज्ञानी है, वे मेरी बात निश्चय ही मान लेंगे।
2: स्वामी क्षमा कीजिए, मैं बिना पूछे ही बोलने लगा हूं। आपका सेवक जो ठहरा, दृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा।
1: नहीं नहीं लक्ष्मण, कहो क्या कहते हो?
2: आप बड़े सहृदय और सरल चित्त वाले हैं, सबको अपने समान समझकर प्रेम करते हैं। लेकिन स्वामी, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस हो ही जनाई। मैं मानता हूं कि भरत नीतिवान है, सज्जन है, ज्ञानी है, और आपके चरणों में उनकी प्रीति भी है। लेकिन तेउ आजु राम पद पाई, चले धरम मर्जाद मिटाई।
1: लक्ष्मण,
2: वे समझते हैं राम वन में अकेले हैं, इसलिए सेना लेकर आ रहे हैं।
1: लक्ष्मण, लेकिन।
2: लेकिन क्या? अगर उनके मन में कपट ना होता तो सेना क्यों लाते? भरत ही दोसु देह को जाई, जग बौराई राजुपद पाई। नाथ, मेरे कहने का बुरा ना मानिएगा, उन्हीं के कारण हमें ये दिन देखना पड़ा है। अब और नहीं सहा जा सकता। मैं क्षत्रिय हूं, रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं क्षण भर में भरत को सिखा दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राम निरादर कर फल पाई, सो वह समर सेज दो भाई। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, जो सहाय कर संकर आई, तो मारू रन राम दुहाई।
3: तात, तुम्हारा प्रताप सभी जानते हैं, किंतु सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए।
1: लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। संसार में यदि सबसे बुरा कोई मद है तो वह राजमद है। लेकिन जहां तक भरत का प्रश्न है, उनके समान श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हुआ। सुनो, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अंधकार भले ही सूरज को निकल जाए, आकाश भले ही बादल में खो जाए, पृथ्वी भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं सता सकता। लखन, तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।

जिस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय भरत जी निषाद राज के साथ श्री राम की ओर आ रहे थे। उनका मन शंकाओं से भरा हुआ था। सोच रहे थे कि कहीं मेरे आने का समाचार पाकर राम चले न जाएं। तभी निषाद राज ने टीले पर चढ़कर बरगद का वो पेड़ दिखाया जिसके समीप राम की कुटिया थी। फिर तो जहां भी भरत जी राम के चरण चिन्ह देख लेते, उसकी धूल उठाकर सिर माथे पर लगाते। उस समय वे इतने प्रेम विभोर हो उठते कि उनकी दशा देखकर जीव ही नहीं जड़ भी प्रेम में डूब जाते। धन्य है भरत, होत न भूतल भाव भरत को

0: अचर सचर चर अचर करत को। उसी समय उन्होंने राम को देखा। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। उनका मन प्रेम से मगन हो उठा। हर्ष शोक सुख दुख सब भूलकर वे पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े।
1: हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर।
2: भगवान भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं।
0: उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। इस मिलन के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कोई भी कवि मन वचन और कर्म से इसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों भाई सुध-बुध फूल कर परम प्रेम में उमगे जा रहे थे। सीता जी तो इतनी विफल हो उठी थी कि बोल ही नहीं सकी। वास्तव में उस समय न तो किसी ने कुछ कहा ही, न किसी ने कुछ पूछा ही, क्योंकि सबका मन इतना प्रेममय था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह साहस करके निषाद राज ने कहा,
3: हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ के साथ सब माताएं, अयोध्या के नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने यहाँ आए हैं।
0: सुनते ही राम उधर चल पड़े। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपनी माताओं को देखा, जैसे सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कई के, सरल सुभाएं भगति मति भी, पग परिकीन प्रबोध बहुरी, काल कर्म विधि सिर धरित होरी। इस प्रकार सभी को सांत्वना देकर और सबसे स्नेह से भेंट करके वे आश्रम की ओर लौटे। वहां फिर मिलन समारोह शुरू हो गया। सीता ने अपनी सासुओं को देखा तो एकाएक सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राज हंसिनिया बधिक के हाथ में पड़ गई हूं। और जब मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया तो सबके करुण क्रंदन से वो वन प्रांतर कातर हो उठा। लगा जैसे महाराज का स्वर्गवास उसी दिन हुआ हो। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर सब लोगों ने स्नान किया और दो दिन का व्रत रखा। उसके बाद दो दिन और वे उस वन प्रांतर में घूमते रहे। वनवासी कोल किरात और भील उनका नाना प्रकार से स्वागत करते। उनका प्रेम देखकर अयोध्यावासी लज्जित हो उठते, सोचते राम से इनको इतना प्रेम है, उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है।

0: लेकिन सबके मन शंकाओं से भरे हुए थे। राम लौटेंगे भी कि नहीं? तभी गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुला भेजा, कहा, सबको सुख देने वाला तो एक ही काम है कि राम का राज तिलक हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि राम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे?
1: हे मुनिश्रेष्ठ,

0: आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
1: इसका एक ही मार्ग है और वो ये है कि तुम दोनों भाई वन में रहो और लक्ष्मण सीता सहित राम लौट जाए।
0: मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूं, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हे गुरुदेव, राम और जानकी तो सबके हृदय की बात जानते हैं और आप भी सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपने जो निश्चय किया है उसे पूरा कर डालिए।
2: भरत के ये वचन सुनकर और उनका ऐसा स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ सहित सभी लोग गदगद हो उठे। भरत की विराट महिमा का पार कौन पा सकता है? भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इसलिए वे उनको लेकर राम के पास पहुंचे। बोले,
1: भद्र राम, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सबको संतोष हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना हित अनहित कुछ नहीं सोच पा रहे हैं।
3: गुरुदेव, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उपाय तो सब आपके हाथों है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा।
1: राम, तुमने बात तो ठीक कही, पर भरत के स्नेह का विचार नहीं किया। मेरी बुद्धि तो भरत के हाथ बिक चुकी है। मैं शिव की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम भरत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करोगे उसी से सबका कल्याण होगा, इसलिए पहले भरत की प्रार्थना सुन लो।
3: गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भय न भुवन भरत समभाई। जिस भरत पर आपका इतना स्नेह है उसके सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है? वे मेरे छोटे भाई हैं, उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। जो कुछ भी वे कहेंगे वैसा ही करने में मैं भलाई समझता हूं।
1: तब हे भरत, तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात कह डालो।
0: मैं क्या कहूं, मुझसे बड़ा पापात्मा इस संसार में कोई नहीं।
3: देखो भाई, जहां तक मेरी बात है मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूं, पर मैं करूं तो क्या करूं? जिन महाराज ने मेरे प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए प्राण तक त्याग दिए उनकी बात कैसे टालूं? उधर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बात का ध्यान रखूं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
0: हे स्वामी, आप वही कहिए जिससे आपके चित्त में किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को उलझन में डालकर अपना भला करना चाहता है उसके समान नीच कोई नहीं हो सकता। यदि आप लौट चलते तो सबका हित होता, पर आपकी आज्ञा पालन करना उससे भी कई करोड़ गुना अच्छा है। स्वारथ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। मैं राज तिलक की सामग्री ले आया हूं, आप उसे स्वीकार करके सफल कर दीजिए। मुझे छोटे भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए, मुझ पर निर्णय मत छोड़िए। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत केचित चेतु।
2: कुछ निश्चय हो पाता कि समाचार मिला राजा जनक आ पहुंचे हैं। एक बार फिर उस मिलन समारोह में करुण रस की सरिता प्रवाहित हो चली। सीता की माता राम की माताओं से मिलने आई। वो मिलन भी कैसा अपूर्व था। माता कौशल्या बार बार जनक पत्नी से यही कहती थी कि राजा जनक लक्ष्मण को लौटा ले चलें और भरत को वन

0: मोहे स्नेह भरत मन माही, रहें नीक मोहि लागत नाही। लेकिन भरत और राम के प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता। सब यही चाहते थे कि राम राजा हों और भरत युवराज। सभी निरंतर इसी प्रश्न को लेकर विचार विनिमय कर रहे थे। सभा फिर जुड़ी। मुनि वशिष्ठ ने भरत के उच्च विचारों का परिचय देते हुए कहा,
1: राम, मैं तो यही कहता हूं कि तुम जो आज्ञा दोगे वही सब लोग मान लेंगे।
2: हे नाथ, जहां आपके साथ मिथिलेश जैसे महापुरुष विद्यमान हो, वहां मेरा कुछ भी कहना धृष्टता होगी। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप तथा मिथिलेश जो भी आज्ञा देंगे वही मैं शिरोधार्य करूंगा।
1: आप लोग मेरा यह अत्यंत अनुचित व्यवहार क्षमा कर दीजिए। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। हे राम, आप मेरे माता पिता गुरु स्वामी और मित्र सभी कुछ हैं, परम हितकारी और अंतर्यामी भी हैं। अपने अज्ञान के कारण आपके और पिताजी के वचन टालकर ये सारा समाज लेकर यहां चला आया हूं। ये बड़ी ढिठाई में कर रहा हूं। आप मुझे यही समझकर क्षमा कर दीजिए कि मेरा जी बहुत दुखी है। अब आप आज्ञा दें और वही करें जिसमें मेरा कल्याण हो। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा।
2: भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो, तुम्हारा प्रेम अनुपम है। मन वचन कर्म से तुमने कभी कोई दोष नहीं किया। तुम सूर्य वंश के नियम को, सत्य का पालन करने वाले पिता को, समय को, समाज की दशा को, गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन को समझते हो। किसका क्या कर्तव्य है यह भी तुम जानते हो, और यह भी जानते हो कि कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा और मेरा हित है। इसीलिए भाई, तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो।
1: किंतु आप मुझे संकट में
2: असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है।
1: हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे वही सुख प्राप्त हो गया जो आपके साथ वन जाने में मिलता। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावो जेहसे। मेरे मन में एक और भी लालसा है, पर संकोच के कारण कह नहीं पाता।
2: कहो कहो, संकोच की क्या बात है?
1: यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के मुनियों के आश्रम, तीर्थ, वन प्रांतर, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित ये धरती घूमकर देखाऊं।
2: भाई, यहां मेरी नहीं अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर निर्भय होकर वन में विचरण कर सकते हो। उन्हीं के प्रसाद से इस जंगल में मंगल छाया हुआ है।
0: राम और भरत की ये वार्ता सुनकर सब लोगों को हर्ष भी हुआ और विषाद भी। विषाद इसलिए कि राम को अब वन में ही रहना पड़ेगा। माता कौशल्या ने समझ लिया कि संसार में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। राम मां दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधी रानी। उधर अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर भरत 5 दिन तक उस पवित्र वन में घूमते रहे। उसके बाद एक बार फिर सभा स्थल पर इकट्ठे हुए। राम संकोच के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन भरत उनके मन का भाव ताड़ गए। धीर गंभीर स्वर में वे बोले,
1: हे नाथ, आपने मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी।

0: मेरे कारण सब लोगों को और आपको भी बहुत कष्ट हुआ। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। इस अवधि में मुझे क्या करना होगा ये भी समझाइए।
1: धन्य हो, धन्य धन्य हो, धन्य हो, धन्य
2: हो। भाई, जब तक गुरु वशिष्ठ और राजा जनक जीवित हैं, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी बात का कष्ट नहीं हो सकता। हमारा कल्याण इसी बात में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उससे यदि भूल में कोई बुरा काम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं समझा जाता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हूं कुमग पग पर ही न हालें। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाओ और प्रजा का पालन करो।
0: लेकिन मेरा आधार?
2: तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो।
0: नहीं।
2: तब
0: आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा।
2: जैसी तुम्हारी इच्छा।
3: श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र।

ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाए। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। लेकिन अभी तो विदा का वो पावन और विषाद से भरा दृश्य शेष था। सब एक दूसरे से भेंट करते नहीं आघाते थे। तन मन वचन सब कहीं प्रेम ही प्रेम उमड़ा पड़ रहा था। मेरी काव्यवाणी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर पाएगी। उसका स्मरण करते ही वो लज्जा से सकुचा गई है। विशेषकर सीता जिस समय अपने परिजनों से मिलकर लौटी और अपनी सासुओं से भेंट की, उस प्रीत का वर्णन करने के लिए तो कवि के हृदय में तनिक भी शक्ति नहीं रही है। परिजन माँ तो पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। लेकिन इस पर्व का भी अंत आना था। सबको विदा करके राम लक्ष्मण और सीता परिजनों के वियोग में बहुत देर तक दुखी मन बैठे रहे और भरत के प्रेम तथा स्वभाव का बखान करते रहे। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत सबानी। उधर भरत जनक और वशिष्ठ राम के विरह में बड़े अनमने से उनका गुणगान करते हुए चौथे दिन अयोध्या

0: अयोध्या पहुंच गए। राजा जनक ने 4 दिन वहां ठहर कर सब प्रबंध किए, फिर वे जनकपुर लौट गए। धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपा और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया,
1: गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अवधि में विशेष नियम का पालन करना चाहता हूं।
2: समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई।
0: गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। अबध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन धुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी की जिमी चंपक बागा।

काग रूपधारी भयभीत जयंत सब कहीं मारा मारा फिरा। ब्रह्मलोक शिवलोक समस्त लोकों में पुकारता हुआ अंत में नारद जी द्वारा प्रेरित वो श्री राम की शरण में ही आया। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, भांति भांति से अपने किए पापों के लिए क्षमा मांगी। श्री राम जी ने उसे अपनी शरण आया जान, एक नयन करी तजा। इस प्रकार चित्रकूट में रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। वहां से विदा होते समय वे अत्र ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने श्री राम की अनेक प्रकार स्तुति की।

विश्राम पाकर ऋषि के चरण कमलों में शीश नवा श्री राम जी वन को चले। उनकी छवि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं? आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर बेख बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहै कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। फिर शरभंग मुनि का उद्धार कर श्री राम आगे बढ़े। श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ हो लिए। श्री राम ने आगे चलकर एक विशाल अस्थि समूह देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने सभी ऋषि मुनियों को मार कर खा लिया है। ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा है। इससे श्री राम जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। ऋषि मुनियों को भयभीत जानकर उन्होंने निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। इसके पश्चात आगे चलकर श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण की अविचल और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। मुनि सुतीक्ष्ण ने श्री राम की इन शब्दों में स्तुति की।

सुतीक्ष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें अपनी अविचल भक्ति प्रदान की। फिर वे श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। दोनों भाइयों ने आदर पूर्वक अगस्त्य जी को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद और निर्देश पाकर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडक वन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे।

0: लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर श्री राम ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव आदि के संबंध में विस्तार से समझाया। भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तब एक दिन क्या हुआ,
1: सुंदर तनिक इधर तो देखिए।
2: कौन, क्या है?
1: देखिए तो तुम सम पुरुष न मौसम नारी।
2: क्या
1: हैरान न हूँ, ये संजोग विधि रचा बिचारी।
2: कैसा संजोग?
1: मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही।
2: तो
1: ताते अब लगी रहूं कुमारी।
2: कुमारी?
1: हाँ मनुमाना कछु तुम्हें निहारी।
2: कुमारी उधर देखो, अहि कुमार मोर लघु भ्राता।
1: कुमार
3: सुंदरी सुनो, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा।
1: लेकिन कुमार मैं तो आपको।
3: सुंदरी मैं तो एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा।
1: किंतु तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ संभव है कुमार।
3: नहीं सुंदरी, नीति कहती है सेवक सुख चहे मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुह दूध चहत ए प्राणी। असंभव, बिल्कुल असंभव।
1: कुमार आप पढ़े हैं

0: आप ही मुझे
1: नहीं सुंदरी, मेरा छोटा भाई ही उपयुक्त है।
0: कुमार, तुम ही मुझे अपनाओ। ऐसा भरपूर यौवन, मोहक सुंदरता, 16 श्रृंगार से सजी हुई ये देह तुम्हारे ही वरण करने योग्य है। कुमार,
2: निर्लज तो ही सो बरई, जो त्रिन तोरी लाज परिहरई। चल दूर हो यहां से।
0: देखती हूं, अभी देखती हूं।
1: लक्ष्मण, क्या देखते हो?
2: ले ले पापिष्ठे, तेरे लिए यही दंड।
0: खर और दूषण, तुम दोनों भाइयों के रहते मेरी ये दुर्दशा तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है।
3: आखिर अपनी दुर्दशा का कुछ कारण तो बताओ।
0: कारण? कारण पूछते हो? जाकर राम और लक्ष्मण नाम के उन दो कुमारों से बदला लो।
3: तो क्या आप?
0: हाँ हाँ, उन्हीं कुमारों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। हे भाई, जाओ और उन लोगों से मेरे अपमान का बदला लो।
4: योद्धाओं, युद्ध का बिगुल बजाओ। जाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो।
1: लक्ष्मण, यह कोलाहल सुन रहे? आकाश में उड़ती हुई धूल से लगता है कि असुर समूह अपना आतंक दिखाने को आतुर है। वो देखो, राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। भाई लक्ष्मण, सीता को तुम पर्वत की गुफा में ले जाओ। सावधान रहना।

0: घन घोर संग्राम हुआ, खर और दूषण मारे गए। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायापति श्री राम ने ऐसा कौतुक किया कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। उधर तो राक्षस राम राम कहीं तनु तजहीं पावहीं पद निर्माण, और इधर करी उपाय रिपु मारी क्षण महु कृपा निधान। फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर ले आए। यहां तो पंचवटी में श्री राम ने देवता और मुनियों को सुख दिया, वहां लंका जाकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया।
1: अरे लंकेश, तूने अपने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी ये दशा।
2: अरे पहले ये तो बता कि तेरे नाक कान किसने काट लिए।
1: हाँ बैठे बैठे क्या पूछते हो, वहाँ वन में जाकर देखो। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए।
2: तो फिर क्या हुआ?
1: तुम नहीं समझोगे, मैं तो उनके कामों को देखकर समझ गई हूँ कि वे दोनों भाई पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
2: अरे तू उन बालक

0: नजरों से डर गई।
1: देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवध रत सुरमुनि सुख दाता।
0: तू उनका नाम तो बता।
1: शोभा धाम राम असनामा।
0: और?
1: तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी।
0: तो क्या राम ने?
1: नहीं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करी ही परिहासा।
0: क्या तेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी?
1: मेरी पुकार खरदूषण ने सुनी, वे अपनी विशाल सेना लेकर मेरी सहायता को आए, लेकिन दोनों भाइयों ने सारी सेना को मार डाला।
0: और खरदूषण?
1: उन राजकुमारों ने खरदूषण और त्रिश्रा को भी मार डाला।
0: उन राजकुमारों का इतना साहस, क्या वे लंकाधिपति की शक्ति को नहीं जानते? शूर्पणखा, जा तू विश्राम कर, दोनों कुमार अपने किए का फल भोगेंगे।
2: सारी रात मुझे करवटें बदलते बीत गई, एक क्षण को भी नींद नहीं आई, पल भर को भी पलकें नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देवता, मनुष्य, नाग और पक्षियों में कहीं भी तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके। फिर खरदूषण कैसे मारे गए? वे भी तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? तो क्या ये कुमार भगवान का ही अवतार हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजें भवतरूं। अब इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से मेरा यही दृढ़ मंत्र है। और अगर वे मनुष्य के रूप में किसी राजा के पुत्र होंगे तो उन दोनों को संग्राम में जीत कर उनकी स्त्री को छीन लूंगा।
3: रावण इस प्रकार का निश्चय कर अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र तट पर रहने वाले मारीच के पास चला गया। इधर श्री राम ने एक अन्य ही युक्ति रच डाली। लक्ष्मण जी जब फल फूल कंद मूल लेने गए हुए थे तो श्री राम ने सीता जी से कहा, अब मैं कुछ मनोहर नर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी श्री राम के आदेशानुसार प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं, किंतु सीता जी ने अपने ही जैसी शील स्वभाव और रूप वाली विनम्र छाया मूर्ति वहां छोड़ दी। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। इधर तो ये लीला हो रही थी, उधर रावण की मंत्रणा और भय के कारण मारीच कपट मृग का रूप धारण कर पर्णकुटी के सामने होकर निकला। रावण भी वहीं उस वन में जा छिपा था।

0: आर्यपुत्र वो देखिए, वो कितना सुंदर है वो मृग। सोने का शरीर और उस पर जड़ी हुई मणियां, कितना मनोहर है ये हरिण।
1: हाँ, है तो।
0: सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसे मारकर इसका सुंदर चर मुझे ला दीजिए।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। लक्ष्मण।
2: देव, अरे आपने तो परिकर भी कस लिया, धनुष पर बाण का भी संधान कर लिया।
1: लक्ष्मण, सीता की इच्छा है कि मैं उस स्वर्ण मृग को मारकर उसका चर्म इन्हें ला दूं। मैं ऐसा ही करूंगा।

0: किंतु भाई, वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, अतः तुम सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
1: जैसे प्रभु की आज्ञा।
2: तुम्हारे भाई संकट में है, जाओ तुम शीघ्र ही उनकी सहायता को जाओ।
1: माता, भक्ति विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई।
2: ये बातें बनाने का समय नहीं है।
1: लगता है कठोर सत्य को आप समझ नहीं पा रही हैं।
2: और मुझे लगता है कि कायरता ने तुम्हारी बुद्धि और बल को हर लिया है। तुम जाते हो कि नहीं?
1: आपकी आज्ञा से मैं चला तो जाता हूँ, परंतु।
2: परंतु क्या?
1: कुछ नहीं, ये रेखा खींच रहा हूं, इसका उल्लंघन करने पर आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्मरण रखना।
3: नारायण नारायण नारायण।
0: देव,
2: ये तिवार
0: कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो?
2: आपकी कृपा है यतिवर।
0: राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी?
2: आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ।
0: तब क्या प्रेमालाप?
2: गुसाई जी, आप साधु का वेश धारण किए हैं और इस प्रकार कामी पुरुषों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता।
0: मुझे उपदेश करती है? मेरे नाम और शक्ति से शायद तू परिचित नहीं है।
2: यतिवर, इस प्रकार दुष्टों की जैसी चेष्टाएं करके आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? मुझे तो आपके साधु होने में ही संदेह है, आखिर आप हैं कौन?
0: ले देख मेरा असली रूप। तेरे सामने लंकाधिपति रावण खड़ा है, तेरी अनंत रूप राशि का भिखारी।
2: अरे अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस, खड़ा तो रहे, वो देख स्वामी आ गए।
0: कहां है तेरे स्वामी? आ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल। जान सहित पति सोई। ओ, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये अवश्य ही आज मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर का परित्याग करेगा।
3: रावण, मेरी बात सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल सलब कुल तोरा।
0: अरे बूढ़े जटायु, ठहर,
4: शायद तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है।

0: वृद्धराज जटायु को घायल कर रावण सीता जी को ले चला। विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम जी का नाम लेकर वस्त्रालंकार आदि फेंकती चली गई। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखा। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी के संबंध में समाचार पाकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। पर्णकुटी को सीता जी से रहित देखकर वे बहुविध विलाप करने लगे।
1: हा गुणखानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, तुम कहाँ हो प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी?
2: तात, विषाद का परित्याग कीजिए, आपके समान धीर पुरुष संसार में दूसरा नहीं है।
1: सुनो जानकी, तो ही बिन आजू, हर से सकल पाई जन राजू।
2: तात, देखिए सारा वन प्रदेश पार कर हम कहाँ आ पहुंचे।
1: राम राम राम।
2: तात
1: राम,
2: इधर देखिए कोई पंख कटा विशाल पक्षी दम तोड़ रहा है।
1: राम, अरे राम, अरे ये तो गिरधराज जटायु है। तात, तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दुर्गति का कारण कौन है?
3: नाथ, दशा नन ये गति कहनी, तहीं खल जनक सुता हर लीली।
1: तात, जानकी किधर है, किधर गया है दशानन?
3: ले दक्षिण दिशी गयों गोसाई, बिलपति अधिक कुररी की नाई।
1: उन्हीं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है तात।
3: दरस लागे प्रभु राखे प्राण, चलन चहत अब कृपा निधाना।
1: तात, आप अपने देह की रक्षा कीजिए।
3: नाथ, मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है, सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नात के खा गए।
1: तात, आपने अपने शुभ कर्मों से ही सदगति पाई है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु।

0: तुम धामा, देव काह तुम पूरन कामा।
1: नाथ, ये सब आपकी कृपा है।
0: मेरी मेरी एक प्रार्थना है, सीता हरण तात जनि कहु पितासन जाई, जो मैं राम तक कुल सहित कह ही दसानन आई।
2: राम के इतना कहते ही गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूखन बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। अबिरल भगति मांगि पर गीध गयो हरि धाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए और वन की सघनता देखते हुए आगे चले। मार्ग में उन्होंने कबंध का वध किया, उसे गति देकर श्री राम जी भाई सहित शबरी के आश्रम में पधारे। दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई, प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे।
3: प्रभु, मेरा अहोभाग्य आप इस दीन की कुटिया में पधारे, कंदमूल के सिवा इस दीन के पास और है ही क्या, कृपा कर आप यही ग्रहण कीजिए। प्रभु,
0: देवी यह तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है, इनके माधुरी के सामने षटरस व्यंजन भी व्यर्थ है।
3: प्रभु, कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती आभारी, मैं तो बहुत ही पापनी और मंद बुद्धि हूं। प्रभु,
0: देव मेरी बात सुनिए, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं, जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन कुन चतुराई, भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारित देखिया जैसा। और मैं देख रहा हूं कि शास्त्रों में बताई गई जो नौ प्रकार की भक्ति है वह सब तुम में दृढ़ रूप में विद्यमान है, इसलिए योगियों को भी जो गति दुर्लभ है वही आज तुम्हें सुलभ हो गई।
3: ये सब आपकी कृपा है प्रभु।
0: देव, अब अगर तुम्हें जानकी का कुछ भी पता हो तो कृपा कर हमें बता दो।
3: पंपा सरही जाओ रघुराई, तहां होई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा।
2: इस प्रकार शबरी ने नमस्कार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जी को सारी कथा सुनाकर हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करके वो योगाग्नि में देह त्याग कर दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई। तदनंतर अनेक कथा संवाद कहते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की छटा निरखते पंपा सर जा पहुंचे। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तभी नारद मुनि ने सीता हरण की घटना से व्यथित सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी के दर्शन किए।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया।

कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਬਜ਼ ਦਿਖਾਵੂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਮ ਕੋ ਦਿਧਾਮ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।